FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत आस्था के स्वर कार्यक्रम में।
1: आस्था के स्वर।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए सी एस राजन रचित देशभक्त गीत, स्वर सुरेश तिवारी और साथियों का है।

आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम का अगला भजन है माँ इंदिरा देवी का, स्वर नंदिनी शरण का है।

0: चंद्रु आत्मा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आस्था के स्वर।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत आस्था के स्वर कार्यक्रम में।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख निधि गंगेले का है और निवेदक स्वर है उमेश कुलकर्णी का।
3: आज के इस भौतिकता भरे माहौल में हर व्यक्ति व्यस्त है। जिससे भी पूछें या कोई काम कहें, जवाब मिलता है समय नहीं है। चारों ओर एक अजीब सी व्यस्तता दिखाई देती है। व्यस्तता के नाम पर समाज में बिखराव आ रहा है। पड़ोसी की भी

0: समय नहीं है। चारों ओर एक अजीब सी व्यस्तता दिखाई देती है। व्यस्तता के नाम पर समाज में बिखराव आ रहा है। पड़ोसी की भी सुध नहीं है, यहाँ तक कि पारिवारिक सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैल्यू आर्नोल्ड के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित, आतुरता एवं खंडित उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। क्या वास्तव में मनुष्य के पास समय नहीं रहा? क्या वह इतना व्यस्त है? आइए हम इस पर विचार करें। आज भी अधिकांश व्यक्ति दैनिक कार्य एवं जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर अतिरिक्त कार्य करने वालों का प्रतिशत अत्यंत अल्प है। फिर हर व्यक्ति व्यस्त क्यों है? हमारा समय कहाँ और कैसे नष्ट हो रहा है, यह विचारणीय है। समय के नष्ट होने का मूल कारण है, हम समय की उपयोगिता के महत्व को नहीं समझते हैं। हमारा अधिकतर समय आलस्य और लापरवाही में बीत जाता है। हमारा जीवन क्रम अस्त व्यस्त है। कार्यों के संपादन का समय निर्धारित नहीं है। बहुधा अधिकांश लोग बुलाए गए स्थानों पर, यहाँ तक अपने कार्यस्थल भी ठीक समय पर नहीं पहुँचते हैं। हिंदुस्तानी समय या इंडियन टाइम का जुमला सर्वत्र सुनने को मिलता है, और हम अन्य रूढ़ियों की तरह इस परंपरा का भी निर्वाह किए जा रहे हैं। साथियों, व्यस्त व्यक्तियों या महान कार्यों में संलग्न लोगों के पास भी दिन 24 घंटे का ही होता है, परंतु कार्यों की प्राथमिकता एवं समय के प्रबंधन के कारण उनके पास व्यस्तता का बहाना नहीं होता। वे निरर्थक प्रयोजनों में समय नष्ट नहीं करते, कार्यों का संपादन नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से करते हैं, जिससे कम समय में अधिकतम कार्य संपन्न होते हैं। समय नष्ट होने का एक कारण यह भी है कि हम कार्यों को अरुचि से करते हैं, टालते रहते हैं। इस आदत के चलते अनेक कार्य शुरू ही नहीं हो पाते और अनेकों कार्य अधूरे रह जाते हैं। फलस्वरूप हमारे सामने अधूरे कार्यों का ढेर लग जाता है। फिर हम अनावश्यक तनाव से ग्रस्त एवं उलझकर रह जाते हैं। इसके चलते नए कार्य शुरू ही नहीं हो पाते। यदि हम समय रहते अपने कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने की आदत डाल लेंगे, तो समय नहीं है वाली स्थिति से उबर सकते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण उपयोगी है। बालक ध्रुव और शंकराचार्य, इन्होंने छोटे से जीवन में अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय अल्पायु में ही प्रदान किया था। गांधी जी ने समय का मूल्य पहचाना और इसी कारण वे महात्मा बन सके। यदि हम समय का मूल्य समझकर प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करेंगे, तो हमारे स्वयं का जीवन सुखद होगा, साथ ही हम समाज एवं देश की कल्याणकारी गतिविधियों में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे।
1: ये था आज का चिंतन।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: और आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया गया। गायक स्वर शिप्रा बोस का और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक श्री सतीश भाटिया।
1: अरे वाह, आइए आइए आइए, आप सभी का स्वागत है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा में एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर।
0: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है खरीफ फसल में आवश्यक कार्य। वाचक स्वर सीमा कराहे का है।
2: किसान भाई बहनों, राम राम। किसान भाई बहनों, आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा खरीफ में आवश्यक कृषि कार्य पर। भाई बहनों, जैसी जैसी गर्मी तेज हो, हमारा किसान भाई बहन

0: खरीफ की तैयारी शुरू कर दे। खरीफ की फसल ना जून में मानसून का आगमन का साथ बोई जाए, जी की अक्टूबर के आसपास काटी जाए। खरीफ फसल ना बारिश पर निर्भर करे, एक अच्छी तरह से योजना बनाउनो महत्वपूर्ण छे। वर्षा, तापमान न कीट न का प्रकोप में बदलाव खरीफ की खेती की सफलता का प्रभावित करे। सबसे पहले तो बुआई शुरू होने से पहले मिट्टी की जाँच प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। एक साधारण परीक्षण से मिट्टी को पीएच मान, पोषक तत्व स्तर न कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को पतो चली जाए। इना परिणाम न का आधार पर किसान मिट्टी का संतुलित करी न उर्वरक न कार्बनिक तत्व न का चुनी सकज। अच्छी तरह से तैयार खेत स्वस्थ जड़ न का विकास का बढ़ावा दे, न फसल का रोग न जल तनाव का प्रति प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावा। अपना क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी का प्रकार न पानी की उपलब्धता का आधार पर उपयुक्त फसल को चुनाव करना महत्वपूर्ण छे। अच्छी उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी न सूखा सहन करने वाले किस्म न को चुनाव करा। अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सुझाव का लेना, स्थानीय कृषि विस्तार केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह जरूर लेवा। मौसम का पूर्वानुमान के अनुसार किसान अपनी बुआई न सिंचाई कार्यक्रम की योजना बनाना में मदद कर सकज। कई कृषि तकनीक एप न जिला स्तरीय वर्षा पूर्वानुमान से मदद लई न कब बुआई करनो चाहिए, केतरो पानी उपयोग करा, ये सब जानी लेनो चाहिए। खरीफ सीजन का दौरान कुशल जल प्रबंधन महत्वपूर्ण छे। वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना, खेत की मेड़ बनाए रखना, न ड्रिप सिंचाई न मल्चिंग जैसी विधि न का अपनावा। शुरुआत में पानी को संरक्षण करना को मतलब छे कि बाद में फसल का हम बेहतर तरीका से उगाई सकान। एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धति न का अपनावना सी फसल का नुकसान का कम करो जा सकज। रसायन न का उपयोग को कम करा। पोषक तत्व न को प्रबंधन भी उतरो जरूरी छे। उर्वरक न का जरूरत से ज्यादा उपयोग फसल न पर्यावरण दुई न का नुकसान पहुंचाई सकज। मिट्टी परीक्षण का नतीजा न का आधार पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाई न बेहतर उत्पादकता न स्थिरता सुनिश्चित करनो चाहिए। मिट्टी की गहराई के अनुसार फसल लेवा, असिंचित खेती में सफलता को एक राज छे। मिट्टी की गहराई अनुसार फसल को चयन करा। अलग अलग गहराई वाली मिट्टी में इन संचित पूंजी की अलग अलग मात्रा उपलब्ध हो। खरीफ की फसल न बारिश समाप्त होने पर इन संचित जल को जल से अपनो निर्वाह करे। जितनी मिट्टी गहरी होगा कुल जल की मात्रा उतनी अधिक होगा। मिट्टी की गहराई के अनुसार फसल को चुनाव करा। अल्प अवधि किस्म न जैसे संकर मक्का का साथ सोयाबीन, संकर ज्वार का साथ सोयाबीन, मध्यम गहरी काली मिट्टी में संकर ज्वार, संकर बाजरा, मक्का का साथ सोयाबीन या अरहर की मध्यावधि किस्म न का साथ में बोवा। ज्वार की जड़ न पौधा से काफी दूर तक फैलेल रहे, इसकी गहराई 3 से 4 फीट रहे। जमीन में ये जड़ न काफी अच्छी तरह से फैलेल। ज्वार में रेशादार मूल पद्धति जेको जन्म तना की सबसे पहली गांठ सी हो, पौधा का जीवन में खास महत्व रखज। बाकी जड़ न पौधा का सारा जीवन काल तक रहे। ज्वार की जड़ न भ्रूण पोषक सतह में सिलिका की परत जमा हो, इसकी मोटाई किस्म का ऊपर निर्भर करे। इन्हीं परत का कारण इन्हीं फसल में सूखो सहन करने की ताकत आवे, क्योंकि पानी की कमी का कारण जो अत्यधिक दबाव बढ़े उनका फसल सहन करने की शक्ति इन्हीं मोटाई पर निर्भर करे। ज्वार की फसल काफी हद तक ऊंचा तापमान का सहन करने की शक्ति रखे। भूमि जल को अति अभाव होने पर भी ज्वार न बाजरा की पत्ती न दिन का सर्वाधिक गर्म भाग में गोलाकार मुड़ाव ले ले, जी की प्रतिकूल परिस्थिति का सहन करने की एक प्राकृतिक विधि छे। भाई बहनों, अंतर्वर्ती फसल से अधिक उपज प्राप्त हो, विपरीत मौसम में कीड़ा रोग का प्रकोप से हानि का जोखिम का कम करो जा सकज। साथ श्रम, भूमि न पशु शक्ति को सक्षम उपयोग हो सकज। अंतर्वर्ती फसल आर्थिक रूप से भी अधिक लाभदायक छे। भाई बहनों, फसल न अच्छी किस्म का चयन का साथ नमी की उपलब्धता अवधि के अनुसार हम फसल लगावा। आज की कृषि चर्चा में बस इतना, रोज राम राम।
1: आप सुन रहे थे खरीफ फसल में आवश्यक कृषि कार्य विषय पर कृषि चर्चा, वाचक स्वर सीमा कराहे का।
2: सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवानी सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लेओ निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुने विश्व मलखंब दिवस पर केंद्रित विशेष वार्ता, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब। वार्ताकार हैं पल्लवी पारवानी। 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। सुबह 8:15 हम प्रसारित करेंगे निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश करेंगे पूरी और सुनवाएंगे आपकी पसंद के फिल्मी नगमे आपके मीठे गीत कार्यक्रम में सुबह 8:30। 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। दस बजकर 5 मिनट पर होगा ग्रामीण बहनों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ऐसा कार्यक्रम में बहनें सुनी वार्ता, परिवार में बुजुर्गों की भूमिका। वार्ताकार होंगी प्रज्ञा दीक्षित। इसके अलावा घरेलू नुस्खे, घरेलू व्यंजन, टिप्स, निमाड़ी लोक गीतों के साथ होगी आज की चर्चा जल संरक्षण पर। 10:40 पर हम प्रसारित करेंगे सुगम संगीत। शाम 5:30 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 6:00 युववाणी कार्यक्रम का आकर्षण होगा कुछ बातें कुछ गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30। शाम 7:21 पर होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: रात्रि 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण, एपिसोड 8, किसान सशक्तिकरण, हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। हम आपको एक बार पुनः बता दें, आज है विश्व मलखम्ब दिवस। तो इस विषय पर केंद्रित हम विशेष वार्ता सुबह 7 बजे प्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, और वार्ताकार होंगी पल्लवी पारवानी।

0: अरे क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
1: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। तो सुनते रहिए
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में पेश है आज प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। निमाड़ में हो रही है कस्तूरी भिंडी की खेती। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रकबा 2 साल में दुगुना किया। कंपनियां सीधे नीमच के बाजार से उठा रही है माल। कस्तूरी भिंडी के बीज से होता है इत्र का निर्माण। 1 क्विंटल बीज की कीमत 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक। शहर में नगर निगम द्वारा प्राचीन ताल तलैया तालाबों और कूड़ों को सहेजा जा रहा है। इसके लिए निगम

0: करवा रही है सफाई, फिर संरक्षित करने के लिए बनाई जाएगी कार्य योजना। शहर की प्राचीन तलाइयों को मिलेगी संजीवनी, सिंघार तलाई का गहरीकरण शुरू, आज से गणेश तलाई में भी चलेगा अभियान। देशगांव रुधी और नहालदा शेगांव देवी बाईपास से मिलेगी शहर को जाम से निजात। नहालदा से भंडारिया होते हुए अमरावती रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र 4.80 एक नया बाईपास बनाया जाना है, जिससे महाराष्ट्र बुरहानपुर जाने वाले भारी वाहन शहर से बाहर से ही निकल पाएंगे और शहर में जाम से मिलेगी राहत। नगर पालिक निगम खंडवा ने जल कल्याण शिविर लगाया, समान नागरिक संहिता से संबंधित हेल्प डेस्क भी लगाई। शिविर में आए 550 आवेदन, जिसमें 540 आवेदनों का किया त्वरित निराकरण। और अब खेल समाचार। विमेंस T20 वर्ल्ड कप वनडे की चैंपियन भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज भी जीत के साथ किया। टीम इंडिया के लिए रही अहम जीत। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थी आज की ताजा खबरें। समाचारों का संकलन किया तृप्ति सोनी ने।
1: आज की ताजा खबर

0: हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुने विश्व मलखंब दिवस पर केंद्रित ये विशेष वार्ता, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब। वार्ताकार हैं पल्लवी पारवानी।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी पारवानी खंडवा मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट मलखंब प्लेयर आप सभी को मलखंब दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में विदेशी जिम या जिमनास्टिक की तस्वीरें आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने भारत की मिट्टी से एक ऐसा खेल निकलता है जिसके आगे दुनिया का हर वर्कआउट फीका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलखंब की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा मलखंब आज का नहीं बल्कि लगभग 900 साल पुराना है। इसका सबसे पहला जिक्र 12वीं सदी में यानी साल 1135 के आसपास चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के ग्रंथ में मिलता है। तब पहलवान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लकड़ी के खंभे पर ये करतब दिखाते थे। वक्त बदला और ये कला धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई। लेकिन कहते हैं ना कि असली हुनर को कोई दबा नहीं सकता। 19वीं सदी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु ने इस खेल को एक नया जीवन दिया। उन्होंने हमारे योद्धाओं और सैनिकों को फिट रखने के लिए मलखंब को दोबारा जिंदा किया। सरल शब्दों में कहें तो मल का मतलब है पहलवान और खंभ का मतलब है खंभा, यानी खंभे से कुश्ती। और दोस्तों गर्व की बात तो यह है कि साल 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपना राज्य खेल यानी स्टेट स्पोर्ट घोषित किया है। आज मलखंब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। हवा में बिना किसी सहारे के योग और जिम्नास्टिक करना, सच में यह हमारे देश की वह विरासत

सत है जिस पर हमें नाज होना चाहिए। मलखम का भविष्य अत्यधिक उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। प्राचीन समय में केवल पहलवानों की कसरत तक सीमित रहने वाला यह खेल अब वैश्विक खेल यानी ग्लोबल स्पोर्ट और एक बड़े करियर विकल्प के रूप में उभर रहा है। वैश्विक पहचान और ओलंपिक का सपना यानी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एंड ओलंपिक एस्पिरेशन। विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, मलखम अब केवल भारत का खेल नहीं रहा। वर्ष 2019 में मुंबई में आयोजित पहली मलखम विश्व चैंपियनशिप में 15 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मलखम के क्षेत्र में खंडवा मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि खंडवा निमाण मालवा क्षेत्र का हिस्सा है, इसीलिए इसका जुड़ाव इस खेल से बहुत गहरा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में मलखम को राज्य खेल यानी स्टेट स्पोर्ट घोषित किया जाने के बाद से खंडवा इस खेल का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। मलखम की ऐतिहासिक और क्षेत्रीय कहानी से हटकर यदि हम विश्व रूप से इस खेल की तकनीक, प्रकारों, नियमों और इसके वैज्ञानिक फायदों की बात करें तो यह खेल अपने आप में मानव शरीर और विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना है। मलखम के तीन मुख्य प्रकार, पहला फिक्स्ड पोल, यह जमीन से सीधा गड़ा गया सागवान या शीशम की लकड़ी का एक खंभा होता है। इसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 8.5 फीट होती है। खंभे के ऊपरी हिस्से का गहरा कम होता जाता है और सबसे ऊपर एक गोलाकार हिस्सा होता है जिसे नो यानी नोप कहते हैं। इस पर मुख्य रूप से पुरुष एथलीट प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, हैंगिंग मलखम, यह पोल मलखम का ही छोटा रूप है लेकिन यह जमीन से जुड़ा नहीं होता। इसे चेन या हुक के सहारे हवा में लटकाया जाता है। इस पर संतुलन बनाना सबसे कठिन होता है क्योंकि खिलाड़ी के वजन के साथ खंभा भी हवा में हिलता है। तीसरा, रोप मलखम, इसमें लकड़ी के खंभे की जगह एक मोटी जूट या सूती रस्सी हवा में लटकी होती है। खिलाड़ी बिना किसी गांठ यानी नॉट के पैर की उंगली की पकड़ से रस्सी पर चढ़ते हैं और हवा में जलित योगासन करते हैं। यह मुख्य रूप से महिला एथलीट के बीच बहुत लोकप्रिय है। मलखम को सभी खेलों की जननी या दुनिया का सबसे संपूर्ण वर्कआउट माना जाता है क्योंकि एरियल योग या जमीन पर किए जाने वाले कठिन योगासनों को हवा में खंभे या रस्सी के सहारे करने की कला है। 360 डिग्री फिटनेस, जिम में अलग अलग मांसपेशियों के लिए अलग मशीन होती है। मलखम में एक साथ कोर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिबिलिटी और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ संतुलन का विकास होता है। खेल के नियम और अंक प्रणाली यानी रूल्स एंड स्कोरिंग, आधुनिक मलखम प्रतियोगिताओं में जिमनास्टिक की तरह ही अंक दिए जाते हैं। एक खिलाड़ी को खंभे या रस्सी पर अपनी करतब दिखाने के लिए आमतौर पर 90 सेकंड्स यानी 1.5 मिनट का समय मिलता है। खिलाड़ी को तीन चीजों के आधार पर अंक देते हैं। पहला, माउंट्स, खिलाड़ी कितनी फुर्ती और स्टाइल से खंभे पर चढ़ता है। दूसरा, एलिमेंट्स, खंभे पर बनाए गए आसनों की शुद्धता और स्थिरता। थर्ड, डिसमाउंट, अंत में खंभे से बिना संतुलन खोए जमीन पर सुरक्षित और सुंदर लैंडिंग करना। पोल मलखम के प्रदर्शन से पहले खंभे पर अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। यह दो वजहों से किया जाता है। पहला, त्वचा की सुरक्षा, लकड़ी के सूखे खंभे पर तेजी से फिसलने से खिलाड़ी की त्वचा छिल सकती है। तेल फ्रिक्शन को कम करके त्वचा को बचाता है। दूसरा, पकड़ की चुनौती, तेल लगाने से खंभा बेहद चिकना हो जाता है जिससे खिलाड़ी की पकड़ यानी ग्रिप की असली परीक्षा होती है। आइए अब जानते हैं जिमनास्टिक और मलखम का अंतर। जिमनास्टिक करने वाले एथलीट के नीचे मोटे और स्पंज वाले गद्दे होते हैं लेकिन पारंपरिक मलखम में खिलाड़ी सख्त लकड़ी के खंभे पर बिना किसी हार्नेस या सुरक्षा के हवा में 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाते हैं। यह पूरी तरह से जान हथेली पर रखकर किया जाने वाला खेल।

0: खेल है।
1: अब मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताती हूँ। 70+ की उम्र में युवाओं जैसी फुर्ती आप रेडियो पर उदय देशपांडे जी का उदाहरण दे सकते हैं। विमलकम के वैश्विक पितामह यानी भीष्म पितामह माने जाते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में वे आज भी 70 से अधिक की उम्र में युवाओं की तरह खंभे पर चढ़कर मलखम सिखाते हैं। उन्होंने कई विदेशी छात्र छात्राओं को भी यह कला सिखाई है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे आज दुनिया एरियल योग या कैलिस्थेनिक कहकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वह पूर्वज सदियों पहले मलखम के रूप में फ्री में कर रहे थे। सोचिए, बिना किसी महंगे गद्दे या सेफ्टी बेल्ट के सिर्फ एक तेल लगे हुए चिकने खंबे पर हवा में सेकंड के 100वें हिस्से में अपनी पकड़ बदलना और संतुलन बनाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह शरीर और दिमाग का अल्टीमेट कनेक्शन है। आज जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लोग भारत आकर इस खेल को सीख रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया हमारी इस विरासत का लोहा मान रही है, तो हम क्यों पीछे रहें? तो दोस्तों, अगली बार जब फिटनेस की बात हो तो जिम की मशीन के साथ साथ कड़क देसी मलखम को भी याद रखिएगा। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। थैंक यू।
2: मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब। विश्व मलखम्ब दिवस पर केंद्रित ये विशेष वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार पल्लवी पारवानी।

सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर

0: आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है।
1: बेरखेड़ी जैतून में ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उस पर भी यह काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं इस पर भी यह काम होगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
3: सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा। स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
4: पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पर आमदनी कम थी। गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना लें।
3: अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

0: आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। पन्ना सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम।

0: मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में। श्रोताओं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, क्या आप मुझे पहचान गए? जी हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ विद्या।

0: से हैं गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम के एक और अंक के साथ। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और गुड मॉर्निंग खंडवा।
1: नजरें

श्रोताओं, जीवन में सकारात्मकता एक ऐसी चाबी है जिससे व्यक्ति समस्या के हर ताले खोल सकता है। यदि आप सकारात्मक हों तो दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी आसानी से हल हो जाती है। पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, बल्कि तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा के किरणों में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होना जरूरी है, इसलिए हमें ये तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। हर विचार एक बीज की तरह होता है। सकारात्मक बीज आपके पॉजिटिव नजरियों को उजागर करता है और आपको हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देता है। हम जैसा विचार करते हैं हम उसी तरह बन भी जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा आचरण होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपने मस्तिष्क में कौन सा बीज बोना है। सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति गुलाब के पेड़ में भी कांटों को नहीं बल्कि उसमें खिले हुए गुलाब को देखता है। आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं ना, तो लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो अंत में आप सभी अपनी समस्याओं को दूर कर लेंगे और पाएंगे कि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। जीवन में जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने लगते हैं तो आपको स्वयं ही सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगते हैं। आपके विचार आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को पास नहीं आने देते। क्या आप जानते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थितियों पर भारी रहता है। वो कभी भी अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देता।

0: श्रोताओ, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा और इस समय आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं सकारात्मकता की। सकारात्मक बदलाव यानी ऐसा बदलाव जो जीव, प्रकृति और पर्यावरण के वर्तमान और भविष्य के लिए सार्थक के साथ साथ तीनों में सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बनाए रखने में समर्थ हो। बदलाव तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ बदलाव हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बदलाव के साथ साथ हमारी मानवता, नैतिकता और भौतिकता समग्र रूप से अग्रसर होनी चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान सदी में बदलाव की गति अवश्य तेज हुई है। चौतरफा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे किए हैं और अब देश में कितना परिवर्तन आ चुका है, देश कितना आगे बढ़ चुका है, हमने कितनी तरक्की कर ली है, आइए इस विषय में जानते हैं हमारे इन मेहमान से।
1: मैं अशोक गीते, साहित्यकार, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ।

0: वस्तुतः मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ और साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। साहित्यकार की आंखें बड़ी खुली रहती है, वो चारों तरफ देखता है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आज मैं आपसे मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सबके विश्वास होते हैं वही तो खास होते हैं, और जो वक्त की दीवार पर लिखते हैं इबारत वही तो आगे इतिहास होते हैं। तो अगर हम अतीत की तरफ देखें तो 25 जून 2014 बहुत तारीख है जिस दिन राजनीति के आकाश पर एक ऐसे नक्षत्र का उदय हुआ जिसने भारत की सर्वांगीण विशेषताओं को जो है नए सिरे से जो है सामने रखा। मैं बात कर रहा हूँ आज की राजनीति के ध्रुव में जो उपस्थित है वह श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति में कला, साहित्य और धर्म ये सभी कुछ विज्ञान पर आधारित है, इसलिए उन्होंने विकास के साथ साथ विज्ञान को सबसे ज्यादा सामने रखा है। हमारे यहाँ चार तरह की जो है जातियां हैं, सबसे पहले गरीब जाति, दूसरा युवा जाति, तीसरी भारत की आधी आबादी नारी जाति और चौथी जो है किसान जाति। तो इन जातियों के उत्थान से ही देश का उत्थान होगा, ऐसा इस तंत्र का मानना है। वो कहते हैं कि जब तक इनको हमारे केंद्र में नहीं रखेंगे भारत का विकास अधूरा रहेगा, इसीलिए वो सारी योजनाएं जो है इन्हीं को केंद्रित करके बनाई गई है। चाहे स्वास्थ्य की योजना हो जिसमें आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान योजना हो, नए नए जगह जगह एम्स खोले जा रहे हों, आयुष्मान मंदिर बनाए जा रहे हों, उसके बाद शिक्षा के देखिए कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। पहले जो बांस होते थे उसको भी खरीदने के लिए टीपी लगती थी, परमिट लगता था, लेकिन उन्होंने फ्री कर दिया, बांस पैदा कीजिए बेचिए किसान की आय बढ़ेगी। खेत के मेड़ों पर जो है बांस उगाए जाते हैं तो उनके किसान की आय बढ़ती है। बहुत छोटी बात, एक और बात कहना पड़ेगा किसान के बारे में कि पहले जो है छोटे छोटे जो अनाज थे जिनको मोटा अनाज कहते हैं, इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, उनमें सावा, कुटकी, भगर ये चीजें बिना पानी के पैदा होती है। तो इस सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। आज विश्व में इस मिलेट के लिए बहुत उत्सुकता है, कैसे बनाते हैं, कैसे पैदा होते हैं बिना पानी के, और ये सबसे ज्यादा पोषक होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा 65-70% होती है। तो ये सोच जो है इस सरकार की है कि जब कोरोना का जो है कहर ढाया पूरे विश्व में, उस समय विश्व के लोग सोच रहे थे कि इतने बड़े जनसंख्या वाला देश कैसे स्थिर रह पाएगा, कैसे अपनी जनता को बचा पाएगा। लेकिन देखिए ये होती है दूरदर्शिता, कार्य करने की प्रणाली, देश के प्रति समर्पण, जनता के प्रति समर्पण, जनता के प्रति सोच, और उसी कारण से आज हमने कोरोना को जीता। आप सोच सकते हैं, उनका कहना है सरकार का कि रिफॉर्म, परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्म, ये जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चीजें जो ये स्लोगन, ये मोटो जब तक जिंदगी में नहीं आएगा, मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा, तब तक विकास कैसे करेंगे। तो ये जो विशेषता है इसी कारण से आज 12 वर्ष स्वर्णिम 12 वर्ष हमारे भारत के जिसमें सर्वांगीण जो है विकास की लहर गई है। तो श्रोताओं मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, नकारात्मकता हमारे मन में नहीं भरे, हम सकारात्मक भाव से देखें कि आज हमारा देश किसने देख रहा है। भारत का एक उसूल और है, जो अपने आप को हमारा दुश्मन मानते हैं, हमने उनके दुश्मनों को भी दोस्त बनाया है। मोदी जी ने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं बदल सकते, अटल जी का भी कथन था कि हम सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो क्यों ना हम पड़ोसियों से अपने संबंध सुधारे, बशर्ते पड़ोसी उस लायक हो। हम सरकार के प्रति पूर्णतया जवाबदेही हैं। हम आज यहाँ संकल्प ले कि हम जो भी करेंगे हम देश के प्रति करेंगे, देश आगे रहेगा तो हम आगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: देश में घटित प्रत्येक घटनाओं और परिवर्तन पर पैनी नजर रखते हैं समाचार पत्र और मीडिया। तो ऐसे ही हमारे एक मेहमान हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वो किस तरह का परिवर्तन महसूस करते हैं।
2: मैं यहाँ खंडवा जिला मुख्यालय पर एक समाचार कर्मी हूँ, मेरा नाम संजय राठी है। आप सबको नमस्कार मेरा, और समाचारों का काम करने के लिए हर सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के ऊपर हमारे को एक दृष्टि हमेशा रखनी होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से जानकारी आती है और वस्तु स्थिति हम जान सकते हैं।

आपने जो हमसे पूछा था कि विगत 12 वर्षों में जो परिवर्तन है उसके तौर पर हमने क्या देखा, तो उसमें मैंने एक बड़ी चीज ये महसूस की कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके कारण पक्के मकानों में रहने का हर गरीब का सपना पूरा हो रहा है। सर्व सुविधा युक्त पक्के मकानों में रहकर जीवन यापन करना बहुत आरामदायक हो गया है और लोग अपने बच्चों को केयर के साथ रह पा रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का मिशन है, जिससे हमारे यहाँ शहरों

और लोग अपने बच्चों को केयर के साथ रह पा रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का मिशन है, जिससे हमारे यहाँ शहरों और गांवों में स्वच्छता का एक अच्छा वातावरण बना है, और इसको हम महसूस भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं, और स्वेच्छा से लोग इसका पालन करके लोगों को सख्ती से आग्रह भी करते हैं कि भाई स्वच्छता बनाए रखें, डस्टबिन से लेके सारी कचरा किस तरीके से साफ रखना है, नालियां साफ रहें। ये लोग व्यक्तिगत रूप से इस मामले में जागरूक हो गए हैं, और स्वच्छ निर्मल वातावरण में प्रसन्नता के साथ सारे लोग रह रहे हैं, ये बड़ा उल्लेखनीय है। हम समझे कि प्रधानमंत्री का जो प्राथमिक मिशन यही था। इसके अलावा अभी जो मैं देख रहा हूँ, हमने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठते देखा है, वाहन से लेकर अन्य आरामदायक इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आइटम, ये लोगों ने खूब खरीदे हैं और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ी है और जीवन स्तर ऊपर उठा है। अधिकांश व्यक्तियों के पास अपने दोपहिया और चौपहिया वाहन हो चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की वाहन सेवाएं भी बेहतर हुई है, यदि आदमी स्वयं का वाहन ना उपयोग करना चाहे तो। रेलगाड़ियों की जो संख्या बढ़ी है, रेलगाड़ियों का उन्नयन हुआ है, उनकी सुविधाएं बढ़ी है और वो सर्व सुविधा युक्त हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विगत 12 वर्षों में भारत ने प्रगति का एक नया सोपान देखा है, जो अभी सतत चल रहा है, और जीवन स्तर लोगों का ऊपर उठा है और क्रमशः ऊपर उठते जा रहा है, ये मैंने महसूस की। श्रोताओं के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम आम जनता जो है वो अपना सिविक सेंस, नागरिक कर्तव्य जो है उसका अच्छे से पालन करें, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना करें जो सरकार के लिए गैर कानूनी मानी जाए और सरकार हम पर कार्रवाई करे। हमें अपना जीवन यापन करते हुए हमें भी आराम से रहना है, हमारे कारण किसी और को कष्ट न हो। किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना करें जो ऑब्जेक्शनेबल हो। वाहनों को चलाएं, नियमानुसार चलाएं, घर के आसपास एनक्रोचमेंट न करें, सार्वजनिक सड़कों पर एनक्रोचमेंट न करें, और जो आसपास सफाई रखने का जो सिलसिला जारी हुआ है इसको आप लंबे समय तक कायम रखें। हमारा देश किसी भी देश से ज्यादा स्वच्छ बन जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। धन्यवाद।

अब हम बढ़ते हैं आगे, बातें करेंगे स्कूल की, स्कूली बच्चों की, शिक्षक शिक्षिकाओं की और अभिभावकों की, क्योंकि स्कूल जल्दी ही शुरू होने वाले हैं।

निमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। और गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम

0: अच्छू जागे।
1: तो चंदा मामा पृथ्वी के उस छोर पर जाकर सो गए हैं और सूरज चाचू आ गए हैं। रोज ही की तरह न सूरज चाचू कभी छुट्टियां मनाते हैं, ना ही कभी थकते हैं अपने काम से। आप तो भाई पूरा एक माह लंबी छुट्टियां बिताकर आ गए हैं अपने नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी के घर से या फिर किसी खूबसूरत से पर्यटन स्थल से, है ना? क्योंकि जल्दी ही आपकी स्कूल में नए सत्र शुरू होने वाले हैं। अपनी छुट्टियों की बहुत सारी यादें स्मृतियां लिए जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मिलेंगे नए दोस्त, नया बस्ता, नई कॉपी किताबें, नया टिफिन, नया यूनिफॉर्म और सब कुछ नया। कुछ टीचर्स भी नए मिलेंगे आपको। तो बच्चों, स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां आपका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। इसलिए सभी को स्कूल जाना बेहद बेहद बेहद जरूरी है।

0: तो आइए आप जानते हैं कि हमें स्कूल जाना क्यों है जरूरी। जानकारी दे रही हैं श्रीमती प्रीति तिवारी मैडम।
1: आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को नमस्कार। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, स्कूल सिर्फ कुछ शिक्षक नहीं होते। स्कूल तो एक जगह है जहां बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आवेगात्मक और भावनात्मक विकास होता है। स्कूल की चार दीवारी के भीतर बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सीखता, बल्कि जिंदगी के वो तमाम संघर्ष सीखता है जिनसे उसे बड़ी उम्र में दो चार होना है। वह सहयोग की भावना सीखता है जिससे बड़ा होकर वह परिवार, समाज और देश की जिम्मेदारी उठा सके। आजकल न्यूक्लियर परिवारों में जहां बात अब सिर्फ एक या दो बच्चों पर आकर ठहर गई है, जहां कमाने वाले हाथों से खाने वाले मुंह की संख्या कम हो गई है, वहां बच्चा शेयरिंग और केयरिंग कैसे सीखेगा? आजकल बच्चों के मांगने से पहले ख्वाहिश पूरी करने वाले पालक हैं तो उन्हें ना सुनना कौन सिखाएगा? जहां परिवारों में हर बच्चे का अलग कमरा हो, वहां उस बच्चे को अपने हक के लिए जूझना कौन सिखाएगा? उम्र दराज के श्रोतागण याद करें अपना बचपन, जब छुट्टियों में ढेरों भाई बहनों की भीड़ जुटती थी, तब खाने पीने की हर चीज़ साझा होती थी, छीना झपटी भी होती थी। अपने हिस्से में जो मिला उसे फटाफट चट कर जाने के बाद दूसरे के हिस्से को बांटने के लिए मान मनुहार, शातिराना चालाकियाँ सब करने में कितना दिमाग लगाना पड़ता था। जो लुटता था उसका रोना गाना और फिर उसे मनाना, सब्र, धीरज, क्या क्या नहीं सीखा हमने परिवार में। अब देखिए आज के बच्चों को फ्रिज में रखी हुई खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती है, पर उस पर कभी कोई संघर्ष

नहीं होता क्योंकि साझा करने वाला कोई है ही नहीं। तो मैं बात कर रही थी कि स्कूल में जाने अनजाने बच्चे इन भावनात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उनका व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। मैं सोचती हूँ AI के इस दौर में भी स्कूलों की प्रासंगिकता चुकी नहीं है। स्कूल कल भी अहम थे, आज भी है और आगे भी इनकी अहमियत बनी रहेगी। श्रोताओं, स्कूल खुलने वाले हैं, अपने प्यारे नन्हे मुन्नों को स्कूल जरूर भेजिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और बच्चों के लिए हमारा नैतिक दायित्व भी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: बच्चों के स्कूल आने जाने और उनके बहुत सारे नखरों के बीच अभिभावकों को ये समझ ही नहीं आता कि उनका टाइम कैसे मैनेज करें और सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि समय कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ अभिभावकों को ही उनके समय का समायोजन कर आदत बनाना होता है। आइए जानते हैं बच्चों के समय का समायोजन कैसे करें। जानकारी दे रही हैं।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम महक मालविया है और मैं एक शिक्षिका हूँ। रोज सुबह जगना, स्कूल के लिए रेडी होना, दौड़ते भागते स्कूल की बस पकड़ना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना और बस आधे एक घंटे के लिए खेलने चले जाना। आज के बच्चों को इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए। जितना बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ाई और स्कूल से संबंधित चीज़ों से बाहर निकलकर अपने लिए पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ जिएंगे, उतना ही उनके दिमाग और पूरे शारीरिक विकास पर सकारात्मक असर होगा। परीक्षा के समय बच्चे और भी ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। यदि आप चाहती हैं कि बच्चे हर काम बेहतर तरीके से करें, तो सबसे पहले टाइम को सही तरीके से मैनेज करना होगा, तभी बच्चों के लिए हर काम के लिए प्रॉपर समय निकाल पाएंगे। शुरुआत से ही बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। इससे कई फायदे होते हैं। बच्चे अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं, इससे उन्हें खेलने के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलेगा, साथ ही उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। इससे उन्हें टाइम मैनेजमेंट आएगा और वे अनुशासित भी बनेंगे। खाना खाने का समय भी फिक्स करें। स्कूल से आने के बाद उन्हें खाने के लिए दे दें। कई बच्चे भूख नहीं है कहकर टाल देते हैं, आप उनकी ना सुने, थोड़ा बहुत खाने के लिए ज़रूर दे दें। रात के समय भी सोने से 2 या 3 घंटे पहले डिनर दे दें। खान पान पर विशेष ध्यान दे दें, इससे उनका विकास भी प्रॉपर होगा। इससे वे पढ़ाई और परीक्षा के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होकर तनाव मुक्त परीक्षा दे सकेंगे। पढ़ाई करने के लिए भी समय फिक्स करें। स्कूल से आने के बाद 2 घंटे सोने के लिए कहें, जब जगे तो उन्हें हल्का फुल्का स्नैक्स दे दें, फिर खेलने के लिए भेज दें। दिन में सो जाएंगे तो उन्हें रात में जल्दी नींद नहीं आएगी, ऐसे वे अपना स्कूल का होमवर्क भी पूरा कर लेंगे। सबसे बढ़कर हमें उन्हें यह यकीन दिलाना है कि हम हमेशा उनके साथ देने के लिए मौजूद है। फिर एक परीक्षा जिंदगी को निर्धारित नहीं कर सकती, इसके आगे जिंदगी के मायने और भी है। अलार्म क्लॉक के जरिए उन्हें समय के मोल के बारे में बताया जा सकता है, जैसे शाम को 7 बजे 9 बजे का समय पढ़ाई का और फिर आधा घंटा मोबाइल चलाना, टीवी पर कार्टून देखना या गेम खेलना। 7 बजे का अलार्म लगा दीजिए, इससे वे समय पर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। ऐसे में लगेगा कि यदि वह 2 घंटे पढ़ लेंगे तो टीवी देखने को मिलेगा। कई बार बच्चे टीवी देखने के चक्कर में टाइम टेबल भूल जाते हैं, ऐसे में आप इस आदत को नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद।

0: दोस्तों, बच्चों का भविष्य निर्धारण परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या स्कूल पहुंचाने से ही जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं ना। तो क्या करें अभिभावक अपने स्कूली बच्चों के लिए, आइए जानते हैं शिक्षाविद और साहित्यकार श्री संतोष तिवारी जी से।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा के श्रोताओं को, संतोष तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को हैं, स्कूलें शुरू होने को हैं। लगभग 2 महीनों की धमा चौकड़ी झेलते हुए पालकगण अब इन नन्हे शैतानों से थोड़े वक्त के लिए ही सही निजात पाने की आस में रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। हालांकि नई स्कूल में दाखिले के लिए कुछ पालक परेशान भी रहेंगे। पसंद की स्कूल यदि सरकारी है तब तो बात बन सकती है, लेकिन यदि निजी है तो बच्चों से ज़्यादा बड़ी परीक्षा पालकों की होती है। इधर निजी स्कूलों के शिक्षक ज़्यादा बच्चों के दाखिलों को लेकर दबाव में रहते हैं, तो सरकारी स्कूल के शिक्षक गत वर्ष की दर्ज संख्या को यथावत रखने की जद्दोजहद में होंगे। स्टेशनरी की दुकानों के मालिक बच्चों से अधिक स्कूल के प्रशासन की तरफ ध्यान देने में लगे होंगे। नई पुस्तकें, नई यूनिफॉर्म, बैग, वाटर बॉटल, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, ऑटो, बस, साइकिल, ये वो और भी जाने क्या क्या। शिक्षा के इस बाजार में सबके सब हैरान हैं, परेशान हैं। पर दोस्तों, एक बात तो बताओ, इन सब में पढ़ाई कहाँ है? बस एक दौड़ है, एक विनिंग पोस्ट की तरह, बस किसी तरह एक बिंदु को छूना भर है, उसके बाद रिलैक्स। बच्चा स्कूल में भर्ती हो गया, किताब कॉपी ज़रूरी चीज़ें खरीद ली, उसके बाद हर कोई रिलैक्स है, पालक भी, शिक्षक भी, स्टेशनरी शॉप वाले भैया भी। वो जिसको स्कूल भेजने और लाने के लिए दुनिया भर की कवायद की, उसके स्कूल में आने के बाद जैसे सारी जिम्मेदारियां ही ख़त्म हो गई। वो स्कूल से कुछ लेकर आया या नहीं, इसकी फिक्र पालक को नहीं है, और वो स्कूल से लेकर कुछ गया या नहीं, इसकी चिंता शिक्षक को नहीं है। जहाँ से दौड़ शुरू होनी थी वहाँ हम निश्चिंत होकर बैठ गए। मेरे एक कवि मित्र हैं, कहते हैं, स्कूल चले हम अभियान में, दुनिया भर की दौड़ धूप के बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहली ही कक्षा में पहले ही दिन उसे कहा जाता है, अमर घर चल। उस पर तुर्रा ये कि झटपट चल, और हाँ, गड़बड़ मत कर। बताइए, जब घर ही जाना था तो स्कूल क्यों लाए? खैर, मजाक एक तरफ, इससे इतर एक गंभीर बात कि शिक्षा की 3 कड़ियां हैं, एक बच्चा, उसके एक तरफ पालक, दूसरी तरफ शिक्षक। किसी भी कड़ी के लापरवाही का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ बच्चे को भुगतना होता है। बच्चे से तो पालक और शिक्षक दोनों कड़ियां जुड़ी हैं, लेकिन ये दोनों कड़ियां, शिक्षक और पालक, आपस में टूटी हुई हैं। शिक्षक और पालक परस्पर जुड़े होंगे तो इस जुड़ाव का सर्वाधिक लाभ बच्चे को ही होने वाला है। तो आज बस इतनी सलाह कि बच्चों को सिर्फ दाखिला दिलाकर निश्चिंत ना हो जाएं, बल्कि उसके बाद अपनी असल जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षकों से बीच बीच में अवश्य मिलें, अपने बच्चों की प्रगति के विषय में चर्चा करें, सिर्फ ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे बच्चों को ना छोड़ दें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ज़रूरी हो तभी कोचिंग जाने दें। बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करें, अधिक नंबर से अधिक उसे विषय वस्तु समझ में आ रही है या नहीं, इस पर अधिक ध्यान दें। अपने बच्चे को एक असंवेदनशील भावशून्य मशीन बनाने से बेहतर होगा कि उसे एक संवेदनशील जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। चलिए, आप सभी को नए सत्र की अनेक अनेक शुभकामनाएं, मिलते हैं, नमस्कार।
2: और भावना दीदी।

0: और श्रोताओं, हर वर्ष 15 जून को मानसून हमारे क्षेत्र में दस्तक दे ही देता है, लेकिन इस बार शायद थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। हमारे आसपास के जिलों में, संभागों में मानसून ने दस्तक दे दी है और जल्द ही हमारे इलाके में भी झमाझम बारिश होगी। बारिश में जल प्रदूषण एक आम मुद्दा है। जल प्रदूषण के क्या नुकसान है, हमें किस तरह से प्रदूषित जल से बचना है और दूषित जल के सेवन से हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार जैन है। आज का जो विषय है कि जल जनित बीमारियां। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक है। सभी उद्देश्यों के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, स्नान करने के लिए आदि। देश में बढ़ती आबादी के कारण सभी के पास साफ पानी उपलब्ध नहीं है। हर साल पानी से होने वाली बीमारियां लाखों लोगों को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से विकासशील देशों में सुरक्षित सुलभ पानी के बिना रहने वाले लोगों को दुनिया में सबसे आम पानी से होने वाली बीमारियों में से डायरिया केंद्रीय लक्षण है। पानी से होने वाली बीमारियां स्थितियों का एक समूह है जो प्रदूषित पानी या भोजन के माध्यम से या खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया एवं अन्य पैथोजन वाले फेजिस से फैलती है। सरल शब्दों में पानी से होने वाली बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां हैं। पानी से होने वाले विकार सबसे आम बीमारियों में से एक है। भारत के योजना आयोग के अनुसार भारत की 85% आबादी पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरी हुई है और सेंटर ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के अनुसार इंडिया में जो पानी से होने वाली बीमारियां है, टाइफाइड, बुखार, प्रचलित एक आम संक्रमण है। ये बड़े पैमाने पर संक्रामक बीमारी प्रदूषित भोजन और पानी से फैलती है। टाइफाइड में लक्षण होते क्या है, जैसे कि तेज बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, पसीना आना, भूख की कमी, वजन घटना, डायरिया या कब्ज। दूसरी बीमारी आती कॉलरा। ये पानी से होने वाली बीमारियों की सूची में से एक और बीमारी है जो कि वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होती है। इसके लक्षण होते हैं डिहाइड्रेशन, डायरिया, जी मचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, अधिक प्यास लगना, मांसपेशी में ऐंठन। तीसरी बीमारी है जियार्डिया। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण पानी में होने वाली बीमारी का उदाहरण है। इसमें जो लक्षण मुख्य रूप से होते हैं, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ऐंठन, सूजन, डायरिया, थकान, भूख में कमी, जी मचलाना, वजन घटना। चौथी बीमारी हेपेटाइटिस ए। दूषित पानी के माध्यम से फैलने वाले हेपेटाइटिस एक उप प्रकार से होने वाले कारण से होता है। यह जल जनित शिकायत, जिसे हम आम भाषा में पीलिया बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से पेट में दर्द होता है, अचानक बुखार आना, त्वचा का पीला पड़ना, थकान, शरीर में दर्द, हल्के रंग का मल, पीले रंग की यूरिन आदि होता है। पांचवें नंबर पे हम बोल सकते हैं साल्मोनेला। ये एक अधिकांश मामले में फिशेस से प्रदूषित भोजन या पानी सेवन से होता है। इसमें जैसे कि अधपका मांस, अंडे के उत्पाद, फल और सब्जियां भी इस बीमारी को फैला सकती है। अधिकांश लोगों में परेशानियां विकसित नहीं होती है, लेकिन बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बूढ़े वयस्कों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में सबसे अधिक परेशानी होती है। इसमें ठंड लगना, सिरदर्द, डायरिया होता है। पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां क्या रखना है? सुनिश्चित करें कि पानी स्पष्ट रूप से साफ और किसी भी दूषित पदार्थ से मुक्त हो। दिखाई देने वाली गंदगी को हटाने के लिए

पानी को छान ले। केवल स्वच्छ और सुरक्षित पानी पिए, या तो पोर्टेबल पानी या वाटर क्लीनर के माध्यम से फिल्टर किया गया पानी पिए। फिल्टर यूनिट, आरओ आदि जैसे शुद्ध पानी कराने वाले उपकरणों को नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। संदिग्ध दिखने वाले नहाने के पानी में डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड मिलाएं। बाहर का खाना, विशेषकर स्ट्रीट फूड खाते समय जब भी संभव हो डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट का उपयोग करें। बासी पका हुआ भोजन, लंबे समय तक बाहर खुला हुआ बिना रेफ्रिजरेटेड भोजन खाने से बचें। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आदि जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं। हर साल लाखों लोग पानी से होने वाली बीमारियों से मरते हैं, लेकिन इन बीमारियों से बचने के उपाय मौजूद हैं, जैसे स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं में निवेश कर हम पानी से होने वाली परेशानियों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों को रोकने में शिक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों को स्वास्थ्य स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करें, हम पानी से होने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।

तो ये था आज का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा अपने ईमेल और खतों के माध्यम से। फिलहाल दे इजाजत विद्या सिंह को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग खंडवा।

0: मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: आप सुन रहे थे साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात, बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करें।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य

0: हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
5: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा।

0: एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है।

0: भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश। देशबंधु ने लिखा है, इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल। वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है, भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं। कहा, देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 8:15 हुए हैं। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत है और इस कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभाकर दुबे और साथियों का गाया ये झालरिया। ये झालरिया साक्षरता पर केंद्रित है।

0: दादाजी
1: तुम्हारी बेटी
0: कहीं आए।
1: अरे देखनी कौन आया वो
0: कौन आया
1: अरे

कर भाई ससरा, तू जाएगा भरने का? अरे बेटा वो तो कहीं जाने का तैयार नहीं है। बेटी मारी थारो ससुर यो।

0: अरे देखने यार दूसरो आयो यहाँ तो लेने वाला नहीं कि लंगाल लगे वो धरो जे
1: हाँ तो नहीं जाऊंगा
0: कसी नहीं जाएगी।

0: दादा जी।
1: अरे कहीं आएगा तारा लेना वाला नहीं किसी लंगा लगे
0: आओ नहीं जाती
1: वो आई गो
0: नहीं, आओ तो नहीं जाऊंगा।

भाई जागो स्कूल बनने का। अरे बेटी वो तो ठाए मना करी रोज।

0: अरे दे गोलियां कौन आया घोड़ा बैठी ना
1: कौन आया
0: वो थारो धनिया
1: अरे ये रेट गया था
0: अच्छा कोई नहीं आवा कहीं लेना का तुका
1: नहीं आओ तो कहीं नहीं जाऊंगा
0: जानू पड़ से बेटा
1: नहीं नहीं

0: बताए वो झलरियो।
1: अरे भाई या तो कही रही कि तू बाछी ने बचता बेटी हर धनिया काई कही रो वो तो बड़ी अच्छी बात बताई रो बेटी मारी हर

0: निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर दुबे और साथियों का गाया ये झालरिया। ये झालरिया साक्षरता पर केंद्रित था। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: अरे पढ़ना होनी काई हुई गयो आज।
2: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।
3: न आज तो निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
4: मजा आ गया।
5: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: तो श्रोताओं, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म नगमे। कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत।
5: आपके मीत ये गीत।

आपके मीत गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ विद्या सिंह, आप सभी को हमारा नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनवाएंगे। पहले हम शामिल कर लेते हैं ईमेल्स। तो ये ईमेल हमें मिला है पालदाना का इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, बबलू, अलीना और अलीशा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी और इनके परिवार के बहुत सारे लोग।

सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार, सोनम सनावत से है, हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, काव्यांशु कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी, हिमाक्ष, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिंगलानी, बबीता मिंगलानी, सुभाष योगी और डब्बू पप्पू। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र दुदी। ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। अंबेडकर कॉलोनी

सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र दुदी, ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, अंबेडकर कॉलोनी बड़वाहा से पुष्पेंद्र रावल, इंदिरा, निहारिका, निशा और अयांश, राठौर मोहल्ला जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, मनीता, छेगांव देवी से है अशोक वाघे, वंदना वाघे, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार और नारायण, फाजिलका पंजाब भूषण खेड़ा से, पंजाब से भूषण खेड़ा है विशाल खेड़ा, विशु लाड़ी, शालिनी, तिवांश, वाणी और आरवी, शाहूनगर यवरात माल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बीबी पियांश, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेल, गनुलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक, भावना वर्मा, खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा। तो आप सुनते हैं हम साजन फिल्म का वो गीत जो पसंद किया है आप सभी ने, गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, नदीम श्रवण का संगीत है, बोल है समीर के।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे जनाब, गिले शिकवे छोड़िए और मजा लीजिए आकाशवाणी खंडवा के शानदार प्रसारण का। साथ ही अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें मेल कीजिए। मेल एड्रेस तो आप सभी जानते ही हैं। आपका मेल हमें मिलेगा और हम आपका पसंदीदा गाना सुनवाएंगे, तभी तो हम कहेंगे।

तो ये गीत जो हमने प्ले किया है आपके लिए जान तेरे नाम फिल्म से है, आशा भोसले कुमार सानू का युगल स्वर, अजीत खान के बोल और नदीम श्रवण का संगीत पसंद करता आप सभी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई, ईशांत और तनुजा देवांगन। इसके अलावा प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पेठण से जो हमारे श्रोता हैं वो है सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, ग्राम नागर कोरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुनदेव साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, निधि, निखिल,

जय आशु राजीम और रजमत। पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से है शिव गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर वामिका और वाणी। इसके अलावा हमारे और श्रोता हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल, रसीद, वारसी अनम और यशफ, धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, शेख तस्लीम, शेख मुजफ्फर, अयान और फैजान, ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न, वाल्मीकि वकील, नीना जी, स्वप्निल और सागर से है चंदेश गोहर, श्रीमती वंदना, मयंक तन्वी और जयपाल, छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश, प्रांजलि, सोहम और सदानंद विराज, स्वीटी और बेबी ओवी। तो आपके साथ हम भी सुन लेते हैं ये बढ़िया सा गीत।

0: तेरे चेहरे में वो जादू है।
1: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और बढ़िया सा गीत आप सभी की पसंद पर। सौराष्ट्र राजकोट से इस गीत को पसंद किया है जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी ने। नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। मोटका माफी से है किसान श्रोता हमारे, जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका। राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और स्वीटी दीवाना। एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर से है नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका और मालती चौधरी। कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग। कुम्हार जिला खरगोन सनावत से है अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना। आदलपुरा गोवावा से संजय बावनिया, माया, कान्हा कृष्णा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरास और नरगिस खातून। डुमराव शहर से वलीउल्ला अंसारी और महताब। काटा रोड वशीम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा, परिधि और मायरा। जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले और मंगला इंगले, इनके साथ है आशीष मोहरेकर। तो सुनिए ये गीत जो हमने लिया है सलामी फिल्म से आशा भोसले और कुमार सानू के युगल स्वर में। इस गीत को संगीत से सवार नदीम श्रवण ने और बोल है समीर।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: रेशमा
2: तो चलिए सुनवा देते हैं आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। उच्च बट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी और शिवन्या। इन्होंने पसंद किया है हमारे इस गीत को। और बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत, चेतन नहाटा, दिशा कुश मुणत, शिवकोटी से राकेश पप्पू से निशा, ओम वैष्णवी, द्वारकी बाई और परिवारजन। थापना से है ज्योति भदौरिया, चीनू, राजेंद्र सिंह भदौरिया, अश्विन और अविराज भदौरिया, नाज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, महराज जहाँ और ये है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार के। कोटवा नारायणपुर पट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित, हैप्पी, दुबिहा, नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, आकोट से विनायक बेंडी, मंगला बेंडी, शुभम, पवन जरिए के डाबेराव, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से हैं ये, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, चंडीगढ़ सिटी से है सतीश अनेजा, बिमला, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस,

और इनके बहुत सारे साथी जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी और इनके भी बहुत सारे साथी। और कुछ और श्रोता हैं, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी। तो ये हैं हमारे आज के सारे श्रोता।

0: दिल रुकना चाहता है लेकिन समय रुकने नहीं दे रहा है भाई। तो कार्यक्रम आपके मिति गीत को यहीं पर समेटते हैं। आज्ञा दे विद्या सिंह को नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आप सुन रहे थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम एफएम एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।
2: कार्यक्रम चित्रलोक लीजिए सुनिए एक विलेन। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अंकित तिवारी का।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रहिए,
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री फिल्म का गाना, आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाज़ से वायु को लिखा हुआ गाना, सचिन जिगर का संगीत है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लव यात्री फिल्म का ये गाना है। देव नेगी यो हनी सिंह इनकी आवाज़ें हैं, शब्बीर अहमद यो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला इनका लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बागी फिल्म का गाना मोलाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ों में कुमार का लिखा हुआ गाना मीत ब्रदर्स का संगीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: वो पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल तुझे क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

0: जाएगी।
1: सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूटकर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

सन 1963 में सुरैया की आखिरी फिल्म आई रुस्तम सोहराब, जिसमें उन्होंने सज्जाद हुसैन के लिए गाया ये गाना।

0: नमस्ते मी।
1: सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब हम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। उमस और गर्मी के बीच पूरे रतलाम जिले में मानसून का इंतजार है। किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और बोवनी के लिए बारिश की राह देख रहे हैं। गर्मी की दोपहरों और धमाचौकड़ी करते बच्चों का शोर स्कूलों में दोबारा जाने के उल्लास में परिवर्तित हो रहा है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चों के लिए कक्षाएं भी तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज ही धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाएगी। एक महीने से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान, व्रत नियम, हवन आदि की पूर्णाहुति भी होगी। समान नागरिक संहिता के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जा रही है कि समान नागरिक संहिता के लिए अपने परामर्श और सुझाव वेबसाइट पर प्रदान करें। आयुष मंत्रालय के द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगरपालिका परिसर रतलाम में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। पूरे जिले में आलोट, जावरा, ताल, बड़ावदा, सैलाना, धामनोद, नामली, पिपलोदा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में रतलाम शहर समेत अधिकांश नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जबकि कुछ बचे हुए शिविरों का आयोजन 17 जून तक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसेवा और जन कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सीधे उनके घर पहुंचकर उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और व्यवस्थित बनाने पर विशेष काम किया जाएगा। बीते दिनों आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड पिपलोदा की ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती, ई टोकन प्रणाली एवं नरवाई प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कालूहेड़ा के वैज्ञानिकों ने खेत बचाओ अभियान, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। पिछले दिनों जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में 1395 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार एवं प्रबंधन किया गया। CMHO डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 616 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान शिशु के जन्म के 6 माह तक और 6 माह के पश्चात पोषण संबंधी महत्व आदि पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीते दिनों जावरा तहसील के ग्राम बीमाखेड़ी में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग तथा खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन संघस्थ महामेले के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों और उज्जैन से आने जाने वाले रास्तों पर संघस्थ के दौरान आने वाले ट्रैफिक के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बैठकें की। रतलाम जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। कृपया
2: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: अभी हम सुन रहा था बहन हेमलता उपाध्याय उनकी सखी न को गायो यो कृष्ण भजन। बहन और आज 15 जून छे नैना दिन का पूरा विश्व में बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का रूप में मनाए जाए। हमारा परिवार का आधार स्तंभ हमारा बूढ़ा अड़ाना का प्रति हमारा कर्तव्य उनके परिवार में भूमिका समझना न उनका प्रति होने वाला दुर्व्यवहार न उपेक्षा का विरुद्ध समाज में जागरूकता बढ़ाना का लेना आज को यो दिन मनाया जाए। तो आओ इन आज विषय पर सुना वार्ता बहन प्रज्ञा दीक्षित से परिवार में बुजुर्गों का महत्व।
1: नमस्कार बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बरसों पहले अपनी दादी के रूठने पर बच्चे

दादी अम्मा मान जाओ जैसे गाने गाकर दादी को मनाते थे, या नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए तब नानी को चिढ़ाते और मस्ती करते थे, जिससे वे अपनी खुशियां ढूंढ लेते थे। मतलब घर के बुजुर्ग घर की खुशियां, घर के रक्षक घर की आन बान शान हुआ करते थे। पर आज के इस आधुनिक समय और एकल परिवार नीति ने इन परिवार के मुखियाओं की अहमियत कम कर दी है। शायद इसीलिए हमें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाना पड़ रहा है। हाँ बहनों, आप सुन रही हो मैं किस दिवस की बात कर रही हूँ। ये किसी खुशी का दिवस नहीं, बल्कि हमारे अपने बुजुर्ग जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की बात कर रही हूँ। आज 15 जून है। यह दिन पूरे विश्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, भेदभाव और शोषण के प्रति समाज को जागरूक करना है। किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन के मूल्यों ने हमें कई पीढ़ियों तक दिशा बतलाई है। इनसे हमें नई दिशा मिलती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के विकास में लगाया है। ऐसे में उनका सम्मान, सुरक्षा और देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्यारी बहनों, आप भी जानती हैं कि आज के आधुनिक युग में जीवन शैली तेजी से बदल रही है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार बढ़ रहे हैं। व्यस्त जीवन के कारण कई बार बुजुर्ग स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं। कुछ बुजुर्ग आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का भी सामना करते हैं, जो चिंता का विषय है। हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन आजकल इतनी व्यस्तताएं हो चुकी हैं कि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं जो बुजुर्ग हमारे परिवार में रह रहे हैं। कई बार उनकी भी फीलिंग्स होती हैं कि बच्चे हमारे साथ खाना खाएं, या बच्चों के साथ हम बैठें, या हम टीवी पर एक साथ कुछ चीज देखें, लेकिन अब यह संभव नहीं है। श्रोता महनो, मेरा तो मानना है कि घर में बुजुर्गों का होना आशीर्वाद के समान है। वे न केवल परिवार के सदस्य हैं, बल्कि अनुभवों का खजाना है, घर की नींव है। वे युवा पीढ़ी के लिए सही मार्गदर्शक हैं। वे युवा पीढ़ी को धैर्य और जीवन के अनमोल संस्कार देते हैं, जिससे पारिवारिक एकता और मजबूत होती है। बहनों, हम घर में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका और होने वाले लाभ को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग होने पर क्या क्या लाभ हैं। एक इसका एक सबसे सटीक उदाहरण अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं कह सकती हूं कि हमें क्षणिक पल के लिए या थोड़े से टाइम के लिए कहीं जाना है, तो हमें ताला बार बार नहीं लगाना। बिना ताला लगाए, बिना घर को बंद करे, हम बिंदास घर छोड़कर जा सकते हैं। पारिवारिक संस्कार और मूल्यों से वे बच्चों में नैतिक मूल्य, संस्कृति और बड़ों को आदर करना सिखाते हैं। आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास और उसकी जड़ों से जुड़ती है। जो बुजुर्ग होते हैं, पुरानी बातों को बताकर अपने बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह से जीवन शैली को बदला जा सकता है। भावनात्मक संबल, जब घर में मम्मी नहीं सुन रही, पापा नहीं सुन रहे, तो बच्चों के लिए एक इमोशनल सपोर्ट होते हैं उनके अपने दादा दादी, नाना नानी, यानी आपके अपने घर के बुजुर्ग। जब घर के सदस्य किसी तनाव या संकट में होते हैं, तो बुजुर्गों की सांत्वना और धैर्य भरी बातें उन्हें राहत देती है। बच्चों की बेहतर परवरिश, माता पिता के काम पर जाने के बाद बुजुर्ग बच्चों को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देते हैं। उनके साथ समय बिताने से बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आपको बच्चों को झूला घर या पलना घर या किसी और मैट को रखकर नहीं छोड़ना पड़ेगा। घर के बुजुर्गों की देखभाल करके आप उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर समय समय पर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। उन्हें अपमानित

0: करना, उनकी बातों को अनदेखा करना, आर्थिक अधिकारों से वंचित करना, उचित देखभाल न करना, या उन्हें अकेला छोड़ देना, या उन्हें वृद्धाश्रम भेजना, यह भी एक तरह से दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। आपका भरा पूरा परिवार है, केवल आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें बुजुर्ग आश्रम में भेज रहे हैं या वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, ये भी एक दुर्व्यवहार का परिणाम है। हमें यह समझना होगा कि बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति को प्रेम, सम्मान और सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। बचपन और पचपन एक सा हो जाता है बुजुर्ग की श्रेणी में आने पर। यदि हम उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुने, उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल करें, तो वे स्वयं को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करेंगे। सुरक्षा दोनों तरफ से बनती है। अगर हम उनके साथ सही समय और सही बातें करें तो हम अपने आप को उनके सानिध्य में सुरक्षित महसूस करेंगे और आपके बच्चे भी उनके साथ खुश रहेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। परिवारों को चाहिए कि वे अपने बुजुर्गों की जरूरत का ध्यान करें। युवाओं को उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया को भी बुजुर्गों के सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास सफल नहीं है। समाज और परिवार की सहभागिता भी उतनी ही होती है जितनी हम बुजुर्गों से अपेक्षा कर रहे हैं। आइए इस विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि अपने घर और समाज के प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें सुरक्षित और सम्मान जीवन प्रदान करें। दुर्व्यवहार दिवस को हम सद्व्यवहार दिवस में बदल दें। हाँ प्यारी बहनों, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर आपको लगा होगा कि दुर्व्यवहार क्या होता है। दुर्व्यवहार नहीं, हमें इस दिवस को सद्व्यवहार दिवस के रूप में बदलना है। अंत में मैं महान विचारक के इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसका भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। मैं यहाँ समाज की बात इसलिए कह रही हूँ, छोटे छोटा परिवार मिलकर एक समाज को जन्म देता है। अगर एक परिवार अपने बुजुर्ग का सम्मान कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो धीरे धीरे समाज का हर परिवार ये करेगा, तो हमेशा बुजुर्ग इज्जत से जी पाएंगे। इसी संदेश के साथ आप श्रोता बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि कल हम और आप भी बुजुर्ग होंगे। ऐसा ना हो कि हम अपने बुजुर्गों के साथ जो कर रहे हैं, हम जो सम्मान उन्हें नहीं दे रहे हैं, कल अगर हम वो पाना चाहेंगे तो शायद हमारे बच्चों से हम इस चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते, हम भी उस सम्मान से वंचित रह जाएंगे। अगर हम सभी अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में बनाए जाने वाले इस दुर्व्यवहार दिवस को सद्व्यवहार दिवस के रूप में बदलना होगा। हमें अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने बच्चों को उन्हें रिस्पेक्ट देना सिखानी है, हमेशा उनको हमारे घर के आशीर्वाद दाता बनाए रखना है, उनसे आशीर्वाद लेते रहना है, और उनकी ब्लेसिंग्स ही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है। अपनी इसी बात के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: बहनों, अभी हम सुन रहा था परिवार में बुजुर्ग न को महत्व, इन विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी प्रज्ञा दीक्षित। नब अपना कार्यक्रम में समय व्यंजन को। तो आज हम आपका लेन लाएज मक्का का पापड़ बनाने की विधि। एक आलन सामग्री लिख लियो। एक कटोरी मक्का को आटो, चार कटोरी पानी, हींग, जीरा, नमक, लाल मिर्ची कूटी हुई, तेल न पापड़ खार या मीठो सोडो भी आप इमें नाखी सको। आप पापड़ बनाने का लेना आपका जो भी मसाला डालना है आपके स्वाद अनुसार डाली सको। अब एक बनावा कसा, तो एक कढ़ाई में चार कटोरी पानी लेवा। नीना पानी में स्वाद अनुसार नमक, पापड़ खार न लाल मिर्ची, कूटे लाल मिर्ची अगर आपका डालना है तो डालो, नहीं तो काली मिर्ची भी आप डाली सको। न जो भी मसाला आपका डालना है, हींग, जीरा, ये सब डाली ना, न एक हम उबाली लेवा। अब एम मक्का को आटो भी डाली देवा। बहनों ध्यान रखा कि जब पानी कुनकुनो रहे तब जमा हम मक्का को आटो डाली देवा, ताकि एम गुठली नहीं पड़ने की।

ने लगातार चलावते हुए एका अच्छा से पकई लेवा। अच्छा से पकाउन से पापड़ अच्छा बनच न फटता भी नहीं है। पापड़ का घोल का पकई न थोड़ो ठंडो होना देवा न फिर ये प्लास्टिक की जो चद्दर आवज या जो प्लास्टिक की शीट आवज ऊपर डाली न एका धूप में सुखाड़ी लेवा। बहनों छोटा छोटा पापड़ चम्मच से भी घोल डाली ना आप बने सकोच या फिर बड़ा भी जैसा आपकी सुविधा के अनुसार आप बने सकोच। अच्छी तरह से सुखाड़ने के बाद इन्हें पापड़ नख हवा बंद डब्बा में रखी ना आप कम से कम साल भर तक इनका खाई सकोच। बहनों इन्हें पापड़ नख हम एक दूसरा तरीका से बने सकें जैसे हम खींची का पापड़ कमाएं। एक आम हम का करना कि एक कटोरी मक्का का आटा पर 2.5 से 3 कटोरी पानी लगेगा। उबलता पानी में मक्का को आटो डाला नेका छत से घेरी लेवा जैसे हम ज्वार की रोटी बनावा उन प्रकार से। अब इना घेरे लाटा का थोड़ा ठंडो होना देवा नौका बाद में का अच्छा सी मसली ना चिकनो करी लेवा न फिर लोई बने ना एका पापड़ बने ना फिर इनका सुखाड़ी लेवा एका से भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट पापड़ बनी जाए। नी पापड़ बने हो ना हम दोपहर में हल्का फुल्का जो नाश्तो रहज हल्की फुल्की भूख में खाई सकें तो पौष्टिक भी रहज न ज़्यादा तेल भी नहीं पीता है। ये तो हुई आज को व्यंजन आप बनाओ जो ना हमको बताओ जो कि कसा बनया। अब घरेलू नुस्खा की बारी तो 50 ग्राम अलसी का बीज 50 ग्राम मेथी दाना 50 ग्राम तिल 50 ग्राम सूखो नारियल न 50 ग्राम आंवला को चूर्ण ये सब ही ले लेवा। आंवला का चूर्ण का छोड़ी ना बाकी सब चीज न खा तवा पर हल्का से भुना न पीसी न चूर्ण बनाई लेवा न आंवला चूर्ण का यहाँ मिले लेवा। अब एक चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी का साथ सेवन करा। बाल न को झड़नू समय से पहले बाल न को सफ़ेद होनु ये सब समस्या न से राहत मिलेगा। नई चूर्ण से हमारा शरीर में जो पोषक तत्व न की कमी छे वो भी पूरी हो जाएगा। तो बहनों ये तो हो आज को घरेलू नुस्खो नाबा टिप्स। बहनों हम रसोई में काम करते समय कभी कभी कही हो कि बिना चाहे भी कभी कभी कुछ ऐसा काम हो जाए जैसा सुधारना में बहुत समय भी लगी जाए न हमको बहुत मेहनत भी लगी जाए। जैसे कि चाय उभाई जाए तो पूरा गैस स्टैंड भंडी जाए सब्जी जलाई जाए न चेटी जाए बर्तन में तो उखा निकालना में भी समय लगी जाए या फिर एक बर्तन में दूसरो बर्तन फंसी जाए उखा निकालना में भी हमका बहुत समय लगी जाए। पड़ेगा निकालना को सबसे आसान तरीको छे कि कई करा कि फसल बर्तन नखा पहले गैस पर रखा न गर्म करा नगर उनका बीच में थोड़ी सी भी जगह हो तो मैं थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश करा। ये पानी पहले बर्तन में गर्म हो जाए न भाप बढ़ज जो कि अपना आप जो फसल बर्तन रह ओखा धकेलज नो बर्तन अपना आप निकल जाए। तो बहनों ये टिप्स भी आपका बहुत काम कुछ है एक आजमाओ जो न हमका बताओ जो ना। अब अपना कार्यक्रम में समय एक अरु निमाड़ी गीत को तो आओ सुना बहन कांता जोशी को गायो यो निमाड़ी गीत।

बहनों, अभी हम ने माड़ी गीत सुन रहा था बहन कांता जोशी से ना। अभी हम देखिए आज के बारिश को मौसम होने वाला छे। ऐसा समय में हम कुछ तैयारी ना पहले से कर ही लेवा, क्योंकि इना समय सब दूर पानी ज पानी रह जेका आने ये पानी जरूरी भी छे बहनों, क्योंकि एको हम ना हमारा किसान भाई बड़ा बेसब्री से इंतजार कर ही रहा। पहली बात तो ये छे बहनों कि बुआई का लेना प्रमाणित बीज न को चयन करा, क्योंकि हमको पानी आने से पहले बुआई का लेना बीज अपना घर में लेना सुरक्षित रखी लेना चाहिए। तो प्रमाणित बीज न सिखाई हो बहनों कि फसल उत्पादन अच्छा हो न ओका जो फसल हो ओका रोग न से लड़ने की क्षमता भी उमा अच्छी रह। खेत न के मेड़ पुरानो सामान जो भी खेत में पड़ेल होए ओका हम व्यवस्थित रखी देवा, ताकि बारिश में कोई कीट पतंगा एमा छुपना नहीं हो पावा। जल निकासी की उचित व्यवस्था करा खेत न। घर में भी हम देखा तो कंडा या पुरानी लकड़ी या अनावश्यक सामान जो भी हो ओका उचित प्रबंधन करा। जल निकासी जो नाले न जल हमारा घर से निकलत उनकी निकासी की भी व्यवस्था करा। नाले न का साफ सुथरी रखा ताकि जल भराव की समस्या नहीं होए। खेत मेड़ना पर जल संग्रहण की

जल संवर्धन की संरचना न बनावा ताकि इना जल का हम भूमिगत करी सका। ट्यूबवेल न का पास भी सोकपीट बनावा ताकि इना पानी का भी हम भूमिगत करी सका। ना हमारा जो ट्यूबवेल छे या नलकूप छे वो साल भर ही हमका अच्छा पानी दे पावा। घर का कूलर न का पानी का भी साफ करा, बदली देवा। घर का आसपास पानी जमाव की समस्या नहीं आवा ऐसी व्यवस्था करा ताकि मच्छर मक्खी नसी होने वाला जो रोग छे वो उनका से हमारो बचाव हो सका। तो बहनों इन्हें हमारी छोटी छोटी बात न को जरूर ध्यान रखा तो हम कई बीमारी न से बचाव कर सकें न कई दुर्घटना न से भी बची सकें। तो बहनों ये तो हुई हमारी आपसी बातचीत। ना अब अपना कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा हुई रोज तो आज्ञा देव आपके बड़े अंतिम बालक राम राम।

0: आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: इच्छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 10:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। तो सुनिए वड़ाली बंधुओं की गाई सुगम संगीत रचनाएं।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: जा

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।

0: तेरे चेहरे में वो जादू है।
1: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: आपकी खैरियत हमारा सुकून। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुकून भरा सुगम संगीत। और सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं वडाली बंधुओं की गाई सुगम संगीत रचनाएं।

तो ये सुगम संगीत रचना हमने आपको सुनवाई वारसी बंधु के स्वर में। आइए अब सुनिए एक और सुगम संगीत रचना, स्वर वडाली बंधुओं का है।

और आइए अब जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे। गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को, इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल। इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में फैज़ अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में सुनिए नक्श लायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है, इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

0: आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
1: मैंने

0: सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है जो सप...

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में, समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत इस ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें गवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूँ और जहाँ तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई, अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: शिखम।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

0: तो कभी था।
1: तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन ज़िंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए

0: के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठे सबके

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में हैं वो,

यही सही है। जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं? तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की इस संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं

0: और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही जिसके हकदार हम हैं।
0: 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मॉनसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन आगामी तीन से चार दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा जाननी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहां करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
4: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा

0: ओडिशा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजापान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखवाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्नलाल भगतराम ने। सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम सनम।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नेहा गरकर देसाई को नमस्कार।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब बस, आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है, और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: वही तो, बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है?
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को

0: अंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था, वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया, घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
0: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में

0: शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना ना था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी, मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे, मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए, मन में तर्क किया।
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और

0: रुपये भेज रहा हूँ।
1: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
2: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
1: कहां से आते हो भैया?
0: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
1: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
0: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
1: हाँ।
0: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
2: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
1: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
0: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
0: अच्छा बाबा मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई।
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है.
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना आठ गुना होके मिलता है. क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना.
1: बिल्कुल. और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें.
0: बिल्कुल लेते हैं.

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियाँ या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुख

0: उनके साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़े अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी, बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा, तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनके मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है।

0: और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई। ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी। INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
0: है। वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
1: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
1: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
0: अब क्या करें,
1: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते
0: हैं। गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सा

0: फिर सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. बारिश भी ना सोनाली जी, प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है. तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है, तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है.
0: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
1: हाँ हाँ हाँ सौंधी सौंधी खुशबू,
0: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना, वो फीके लगते हैं.
1: वो तो है. लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी, जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें. थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है. बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए.
0: बहुत
1: कई
0: जरूरी
1: सारे
0: है.
1: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए. बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए. इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे.
0: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए, तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना.
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल.
0: क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है. कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है. तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है. और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना. इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है. तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए.
1: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए. घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए. कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर. तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है.
0: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
1: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता
0: है. इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है,
1: हाँ,
0: और
1: हाँ.
0: बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए. एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत, सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है. वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए.
1: बिल्कुल. एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है. और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे. नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का. ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था. नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं.
0: बिल्कुल करना जरूरी है. और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
1: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है.
0: तो सुनते हैं गीत.

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयों और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयों सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाइयों खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमीश या दौलत की चाय

0: जैसा कि हमने पहले भी कहा के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार रसेदार या डुबकी वाले आलू यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
1: यानी उड़द की दाल डाली जाती है जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क
0: रहती है। है जो खाने में भी मजा आता है।
1: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

0: सखी
1: सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा

0: ना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि अब क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी

0: कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया। तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना
1: हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो। तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
0: और कितना
1: खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उसपे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक का,
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते
0: हैं।
1: पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो

0: अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
0: जी।
1: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिन

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको

0: ही रिफ्लेक्शन कीजिए, ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है, पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी, शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए।
1: अच्छा।
0: कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है, यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है, तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है,
1: और
0: वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित नहीं करेंगी।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाएगी, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

0: रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार

0: बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
1: और फिर से अपना काम करना,
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है। आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है। और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपके आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने। माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आँखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।
2: दिल

0: फिल्म अफसर, पंडित नरेंद्र शर्मा, सचिन देव बर्मन।
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद कर।
0: फिल्म दर्द, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को

0: जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े

0: आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने

0: छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का

0: क्या पीपा है?
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
0: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
0: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
0: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
0: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
0: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा?

0: अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर

शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा।

0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
1: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है युववाणी।

0: गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा दिलों के चहेते कार्यक्रम युवाणी में, जिसे हाजिर है लेकर आपका ये दोस्त और रेडियो होस्ट आदित्यराज श्रीवास्तव। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह गर्मी के इन तपिश भरे दिनों में चिलचिलाती धूप से हमें बड़े बड़े पेड़ राहत और छाव देते हैं, उसी तरह हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जीवन की ऊंची नीची डगर पर चलने के लिए मजबूत पांव देते हैं। मेरी इस बात के पीछे क्या है कारण, इसकी मालूमात तो आपको कार्यक्रम के आगे हो ही जाएगी, लेकिन सबसे मालूम पहले आपको होना चाहिए आज के हमारे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको हमारे कार्यक्रम के अंत में। जहां हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, बाघ प्रिंट कला मध्य प्रदेश के किस जिले से जुड़ी है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको अपनी याददाश्त, किसी किताब, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, और नहीं कहीं मिले तो कार्यक्रम के अंत में तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जिंदगी के अंतिम पड़ावों पर चल रहे लोग जब हमारे सामने ऐसे कुछ सवाल खड़े कर देते हैं जिनके जवाब हम उन्हें ढूंढ कर दे नहीं पाते, या ढूंढ कर देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी परिस्थिति में उनके उन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं 15 जून को मनाए जाने वाले बुज़ुर्गों के खिलाफ, बुज़ुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाने वाला ये दिन, जो आज के दिन मनाया जाता है, यानी 15 जून को। और इसी क्रम में हमने आज बातचीत की है खंडवा के स्थानीय दादाजी वृद्धाश्रम के संचालिका अनिता सिंह चौहान जी से। आइए सुनाते हैं आपको इस बातचीत के संपादित अंश। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की हमारी चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैम। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे सभी दोस्तों को अपना परिचय दें और ये बताएं कि आप वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं, ये आप कितने समय से कर रही हैं, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी।
1: मुझे इसको संचालन करते हुए 18 साल हो गए हैं, और प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी हमारे मन को विचलित करती हैं। तो हमारा ये मेरे जो मदर हैं, मेरी माता जी हैं, वो खुद भी समाज सेवी रह चुकी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, और उनको मैंने सेवाएं करते हुए अक्सर देखा।
0: मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे सभी दोस्तों को अपना परिचय दें और ये बताएं कि आप वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं, ये आप कितने समय से कर रही हैं, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी।
1: मुझे इसको संचालन करते हुए 18 साल हो गए हैं, और प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी हमारे मन को विचलित करती हैं। तो हमारा ये मेरे जो मदर हैं, मेरी माता जी हैं, वो खुद भी समाज सेवी रह चुकी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, और उनको मैंने सेवाएं करते हुए अक्सर देखा। और हमारी पढ़ाई के उपरांत भी हमने कई ऐसा देखा है कि उपेक्षित लोग, नाना प्रकार के उपेक्षित लोग हैं, जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है, जहाँ पीड़ित हैं वो बुजुर्ग हों या बच्ची या बच्चे, मैं तीनों के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। तो मैंने देखा है कि बुजुर्गों को अपने ही परिवार से अवहेलना झेलते हुए कई पीड़ितों को मैंने ऐसा देखा है कि वो साथ में रह के भी और साथ में नहीं हैं। इसके अलावा एक जो मन को चुभने वाली बात रहती है कि हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों को ही हम भुला बैठते हैं। हम जो पहले थे, जो हमारे पुराने समय में जो होता था, मददगार साबित होते थे, वो आज मददगार के हाथ उठते नहीं हैं। इसलिए जो उपेक्षित लोग भटकते हुए मैंने देखा कई बार आपने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि बुजुर्ग हैं और घर में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और किसी को पता नहीं है।
0: मैम, जैसे आपने बताया कि बुज़ुर्गों की

0: अलग अलग समस्याएं और समाज की आजकल जो अलग अलग परिस्थितियां और जिस तरीके की मानसिकताओं को आप देख रही हैं, जो इससे मुझे एक चीज़ बड़ी ही अच्छे तरह से समझ में आ रही है। मैं एक बात को बड़े ही स्पष्ट तौर पे समझ पा रहा हूँ कि आप इन समस्याओं को इतने लंबे समय से, जैसा आपने बताया, आप 18 वर्ष से इस कार्य में हैं, इस महान कार्य को कर रही हैं। आज के समय में आप बुज़ुर्गों को लेकर विशेषतः सबसे बड़ी समस्या क्या देखती हैं, जो उन्हें एक तरीके से आज के समाज में?
1: जी, सबसे बड़ी समस्या अभी बुज़ुर्गों के लिए हो गया है अकेलापन। मतलब परिवार में रहते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, परिवार की अवहेलना झेलते हैं। तब हम यही भी मान के चलें, वो परिवार में हैं भी तो भी उनके साथ एक समस्या है कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, उन्हें कोई समय देने वाला नहीं है। तो उनका जो एकाकीपन है, वो परिवार में रहते हुए भी जो एकाकीपन है, वो उनको मानसिकता जो है उनकी मानसिकता को खोखला करता जा रहा है। वो चिंतन वाली एक बात है। सबसे बड़ी समस्या यही है, वो कुछ नहीं चाहते, समय चाहते हैं आपका, एक अच्छा व्यवहार चाहते हैं। तो वो जो एकाकीपन है परिवार में रहते हुए भी, वो एक समस्या है। और आपने देखा है कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है,
0: जी,
1: तो वो एक बड़ी समस्या है। जो मानसिकता है कि मैं, मेरा परिवार, मैं और बच्चे, तो उस वजह से जो बुज़ुर्गों की अवहेलना और ज़्यादा हो रही है कि हाँ, जो बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के लिए और अपने जो आकर्षित हो रहा है समाज हमारा, तो उससे और हमारे बच्चों, ये जो बुज़ुर्ग हैं, वो उपेक्षित होते चले जा रहे हैं।
0: क्या आपके अनुभव के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि बुजुर्गों के साथ क्या जो दुर्व्यवहार होता है वो सिर्फ शारीरिक होता है या और भी कई तरीके के दुर्व्यवहार जो होते हैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जीवन में देखना पड़ता है?
1: जी बिल्कुल, शारीरिक दुर्व्यवहार तो हमें दिख जाता है। शारीरिक दुर्व्यवहार किसी से हो रहा है तो हमें दिख जाता है, लेकिन बहुत ही बड़े रूप में मैं चाहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ उनमें मानसिक दुर्व्यवहार जो होता है, जो आप सामने से नहीं देखते हैं लेकिन वो दिन रात उसको भोगते हैं। वो जो मानसिक दुर्व्यवहार कैसा होता है, वो परिवार में रहकर भी जो अकेलापन महसूस करते हैं, उनके पास किसी के बैठने के लिए टाइम नहीं है, बच्चे उनके नहीं बैठ रहे हैं और नाती पोती वो नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी जो हमारी ख़त्म होती चली जा रही है। मानसिक दुर्व्यवहार में जैसे हम कह सकते हैं कि उनसे बातचीत नहीं करना, उनको परिवार में रहते हुए समय नहीं देना। आपने देखा होगा, अभी बच्चे आ गए हैं, परिवार आ गया है, टीवी यदि वो देख रहे हैं, बच्चा आ गया या घर के घर गृहिणी आ गई, उसका समय आ गया, तो बच्चे यदि वो बुज़ुर्ग टीवी देख रहे हैं, उनका स्विच ऑफ हो जाएगा, उन बिना पूछे आपसे बंद कर देंगे, वो अपना कुछ सीरियल लगा लेंगे, वो बेचारे बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक, उन्हें समय चाहिए, उन्हें समय पे यदि उन्हें कुछ शौक़ पूरे करने हैं, उन्हें है ना, कुछ उनको चीज़ अपने मन की बताना है, अपनी अंदरूनी बात उनसे किसी से कहना है, वो 2 मिनट किसी से बोलेंगे कि मैं ना, किसी के पास समय नहीं है। सबसे पहले अवॉइड होता है यदि घर में तो बुज़ुर्ग ही होता है। उनको ऐसा समझा जाता है कि किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया है उसको हम भूल चुके हैं, उन्होंने जो हमें समय दिया है उसे हम भूल चुके हैं। उन्होंने अपना एक एक कण कण दिया है, अपना हर मिनट दिया है, अपना आत्मीयता दी है ना, अपना जो इकोनॉमिकली तो वो लोग करते ही करते हैं, भावनात्मक सपोर्ट हुआ है उनका। कहते हैं ना हमारे बुज़ुर्गों के, जो हमें पिता के जो कंधे झुकते हैं,
0: जी,
1: बच्चों की जवाबदारियों से उनके कंधे झुक जाते हैं, है ना। एक तो उन्हें आप पीठ पर जब लादे हुए रहते हैं तब, दूसरा आपके हर शौक़ पूरे करने में, बच्चों के शौक़ पूरे करने में कौन एक वो जो एक पिता लगा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। और यदि बच्चा, यही होता है कि पिता भी यदि बात करना चाहता है ना अपने बच्चे से, यंग बच्चे से, उसके पास समय नहीं होता है।
0: मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से लक्षण या वो कौन से संकेत, आपने जैसे बताया कि हम देख सकते हैं वो अब खुश नहीं है, तो ऐसे कौन से लक्षण या ऐसे कौन से संकेत हैं जिस पर हम ये समझ सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो किसी तरीके के दुर्व्यवहार या इस तरीके की किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं?
1: देखिए, एक तो सबसे पहला जो एक हम देखेंगे, जो उनके चेहरे की मुस्कान या उनके चेहरे की रौनक है ना, आपको अलग ही समझ में आएगा। यदि आप खुश मिजाज बुज़ुर्ग जिनका बहुत अच्छे से सम्मान हो रहा है घर में, बहुत अच्छे उनके आसपास के सब उनके नौनिहाल उनको घेरे रहते हैं या उनके साथ में बैठ के हम बात कर रहे हैं, खाते पीते हैं, वो खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के बात, तो इन सब में एक अंतर्मुखी हो जाता है।

0: जुड़ गए, वो भी अंतर्मुखी हो जाता है क्योंकि वो बात करना ही बंद हो जाता है उसका किसी से भी। और दूसरा एक चिड़चिड़ापन हो जाता है उनमें, हमें लगता है कि वो चिड़चिड़े हैं, वो चिड़चिड़े क्यों हैं उसका कारण हम नहीं देख रहे हैं, वो उसका कारण हम ही हैं। वो चिड़चिड़ापन हो जाता है उनमें, गुमसुम या तो कोई चुप बैठेंगे, बात नहीं करेंगे। तो और दूसरी बात, अपनी बात जब वो नहीं रख पाते हैं, मन ही मन में घुटन उनके उनके रहती है। तो एक हमने देखा, एक जो भूलने की बीमारी भी होती है उन लोगों में, एक तो वो उम्र दराज होती है, लेकिन जो एक मानसिक, एक जो आप कहेंगे ना चुभन वाली जो स्थितियाँ रहती हैं कई बार, तो उनसे वो अपने आप को खोने जैसा लग जाते हैं।
1: मैम, अगला प्रश्न मैं आपसे ये करूँगा कि अगर ऐसा कोई बुज़ुर्ग जो इस समय रेडियो को सुन रहा है, ऐसा कोई बुज़ुर्ग जो इस समय रेडियो को सुन रहा है, अगर वो अभी आपकी और हमारी इस बात को सुन रहा हो, या ऐसे कोई उन बुज़ुर्गों के परिचित जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो।
0: हमारा जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं वो तो हैं ही, आप उन तक पहुंच सकते हैं। अपने पड़ोसी को भी बताएं आपकी शिकायत, आपके पड़ोसी को जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ या मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। वो चुप्पी न साध के बैठे, कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलेगी। जो उनके कुछ लोग तो होते हैं शुभचिंतक,
1: जी
0: ना भी हों, और ऐसा भी होता है कि कहीं आसपास भी नहीं हैं या कहीं और शहर में रह रहे हैं, कहीं जॉब में रह रहा है बच्चा, मदर फादर गए हुए हैं, तो आपके पास पुलिस का नंबर होता है, वो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। पुलिस सहायता के लिए आप बता बिल्कुल बता सकते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया हुआ है बुज़ुर्गों के लिए,
1: जी
0: वो एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर उसको भी प्रसारित कीजिएगा इस पर।
1: जी
0: तो वो आप हेल्पलाइन नंबर पर जाएंगे तो आपको मेडिकल सुविधा हो, या आपको इस तरह से जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, या आपको केयर टेकर की ज़रूरत है, तो हेल्पलाइन आपकी पूरी तरह से मदद करती है बुज़ुर्गों के लिए। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सरकार ने किया है, लेकिन होता क्या है कि ये सबको पता नहीं होता है, खासकर बुज़ुर्गों। तो हमको भी ये चीज़ों के लिए जागरूक करना आवश्यक है। आपने भी जैसे कहा, हमें भी, हम सबको भी ये प्रचार प्रसार करना
1: करना
0: चाहिए। जो
1: चाहिए।
0: हेल्पलाइन नंबर होता है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता
1: जी
0: है, मैं ऐसे ही बुज़ुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर।
1: अनीता जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले जो दुर्व्यवहार हैं, इस दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।
1: दोस्तों, जिस तरह बुजुर्गों से की गई बातें सुकून देती हैं, उसी तरह हम सभी इंसानों को, चाहे किसी भी उम्र, रंग, कद काठी के लोग हों, बातें ही तो हैं जो आपस में जोड़ती हैं, बातें ही तो हैं जो यादों को संजोती हैं। और इसलिए तो हर सोमवार हम लाते हैं आप सभी के लिए बातों और गीतों से सजा हुआ यह क्रम, कुछ बातें कुछ गीत, जहां बातें और गीत होते हैं हमारे मीत। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, उसके बिना तो मानव जीवन की रीत चल पाना ही संभव नहीं। ना इसका कोई रंग, ना इसका कोई रूप। क्या हुआ, अभी भी नहीं समझे आप? मैं बात कर रहा हूँ हवा की। जी हाँ दोस्तों, हवा, पवन, वायु। मैं बात कर रहा हूँ उस बारे में जिसके कारण हमारा जीवन है। हवा में नहीं कर रहा कोई बातें, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज है ग्लोबल विंड डे, प्रकृति की उस शक्ति को समर्पित दिन जो विकराल हो तो शहर के शहर उजाड़ दे, और अगर सौम्य हो तो परेशान से परेशान व्यक्ति की उतार थकान गहरी नींद सुला दे। इस धरती के हर जीव की प्राणवायु, ऑक्सीजन भी तो इन हवाओं में बहती है। हवा की इसी तरह की अनगिनत खूबियों को आयोजित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे भारत देश में इस बार ऊर्जा के इस नवीन और प्रकृति को लगभग ना के बराबर हानि पहुंचाने वाले ऊर्जा स्रोत को अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार करने हेतु गोवा राज्य में पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से विकास की ओर विषय पर वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत देश। भारत की अनुमानित कुल पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर 695.5 गीगावाट और 150 मीटर की ऊंचाई पर 1163.9 गीगावाट है। अब जब हवा ने हमारे लिए इतने काम है कर दिखाए, तो क्यों ना बहती हवा के लिए क्रम के पहले गीत को भी हवा दी जाए।
2: दादा, दे, दे।

दोस्तों, इस हवा ने अपनी जगह विज्ञान के क्षेत्र में बनाई है। जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा जगह कला, कविताओं, कहानियों और फिल्मों में भी बनाई है। नहीं होता विश्वास तो याद कीजिए ज़रा, किसी रोमांटिक मूवी में हीरोइन का दुपट्टा उड़ते हुए हीरो के चेहरे को सहला करना जा रहा हो भला, किसी कविता में नायिका की बालों की लटों को ना हिलाया हो, या हीरो के विलन से पिटने के बाद उठ खड़े होने के पहले हवा का ज़ोरदार तूफान ना आया हो। हवा का एक झोंका कहानी के पूरे रुख को बदल के रख देता है। यह हवा खुद ना दिखते हुए भी बहुत कुछ दिखा देती है, और तो अगर यह हवा ना होती तो एक दूसरे को हम सुन भी नहीं पाते। हे भगवान, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी आवाज़ आप सभी तक कैसे पहुंचा पाता, क्योंकि विज्ञान बताता है कि लगभग हर आवाज़ वाइब्रेशन के रूप में हवा में ट्रैवल करते हुए ही हमारे कानों तक पहुंचती है। इसलिए अगर यह हवा नहीं होती तो पता नहीं हमारी बात कैसे होती। लेकिन फिलहाल तो क्रम की हवा का रुख क्रम के अगले गीत की तरफ है।

दोस्तों, कुछ वर्षों पूर्व हमने कोविड नामक महामारी का दंश संपूर्ण मानवता पर झेला था। ना करे नारायण, ऐसा दिन फिर देखना पड़े। लेकिन उस समय मुझे अपने चारों तरफ की आबोहवा, पूरा पर्यावरण देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हम सभी मानवों को कोई सज़ा दे रही हो। हम सारे इंडेक्स का ध्यान रखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, फूड इंडेक्स, हंग्रीनेस इंडेक्स और कई अलग अलग तरीके के इंडेक्स जो हमें वैश्विक तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं इन सब के बीच हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ध्यान देना तो नहीं भूल गए? क्योंकि अगर सांसें ही नहीं होंगी तो फिर और होगा क्या? हमारे चारों ओर बहती हवा की शुद्धता के स्तर पर बिना हवा क्या करेंगे हम? नहीं, मैं किसी क्रांति की बात नहीं कर रहा। बस खास दिनों पर एक पेड़ लगा लीजिए, बर्थडे पर, सालगिरह पर, अपने किसी खास की पुण्यतिथि पर। अगर लगा नहीं सकते तो कम से कम जहाँ जरूरी है, जहाँ बचाए जा सकते हैं, वहाँ पेड़ को कटने से बचा लीजिए। गाड़ी चलाना कम नहीं कर पा रहे तो कार पुलिंग करना शुरू कर लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना शुरू कर लीजिए। और अगर ये भी संभव नहीं तो कम से कम अपनी गाड़ियों के साइलेंसर या जिसे हम एग्जॉस्ट पाइप के नाम से भी जानते हैं, उनका सही से ख्याल रखा जाए। हमारी गाड़ियों के एयर फिल्टर को साफ रखा जाए। नरवाई नहीं जलाना है, कचरे प्लास्टिक को आग नहीं लगाना है। क्योंकि अगर प्रकृति ने अपने मंद मंद हवा के झोंकों को क्रोध की तेज पवन में बदल दिया तो मानव सभ्यता की हवाओं का रुख विनाश की तरफ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल तो आपका ये रेडियो दोस्त आपको क्रम का अंतिम गीत सुनाएगा।

हवा के झोंके अब घड़ी की सुइयों से होते हुए मुझ तक आ रहे हैं और कह रहे हैं कि समय अब कार्यक्रम समाप्ति का। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये क्रम? हमें अपने ईमेल्स और पत्रों के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। वो क्या है ना, हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अलविदा कहने और फिर जल्द मिलने का पैगाम करता हूँ आप सभी के नाम, और पूरा करता हूँ आज का एक आखिरी काम। जी हाँ, क्या? हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर बताना। जहाँ हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की गई थी?

जिसका उत्तर है महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा सन 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, बाघ प्रिंट कला मध्य प्रदेश के किस हिस्से से जुड़ी हुई है, जिसका उत्तर है धार जिला। इसी के साथ दीजिए आज्ञा आपके इस दोस्त और रेडियो होस्ट आदित्यराज श्रीवास्तव को। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?
2: श्रोताओं, हम सुन रहे हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। ये मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है, राहुल देव बर्मन का संगीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।

फिल्म त्रिशूल से आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का गीत। संगीत है खयाम का, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजाने
0: FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
4: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल

0: अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
5: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: रे!

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
3: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला।
2: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंड।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डी

फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं। आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार। इसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज के सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉ. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा,
2: आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा।
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इंदौर की सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला और बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित ये संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश भर को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमीटा घाट और अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने मां नर्मदा में स्नान कर वट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड भाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित विचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चयन ट्रायल आज समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भरगी थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण और वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शहडोल में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: काट दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम लेना आज आपका साथ आपकी बहन सीमा। कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाई बहन नखराम राम। भाई बहनों, कृषि केवल किसान न की आजीविका को साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा न आर्थिक विकास को आधार भी छे। हमारा यहाँ कृषि कार्य मौसम न ऋतु का अनुसार कराया जाए, हर महीना को अपनो विशेष महत्व छे। इस समय हम सब गर्मी से परेशान छे, पर ऐसी तेज गर्मी में भी हमारा किसान भाई बहन लगे आज खरीफ फसल की बुआई का लेना खेत की तैयारी में। भाई बहन, बुआई का लेना आशा न उत्साह से हमारा किसान भाई बहन खेत तैयार करी राज। रस्तो देखी राज मानसून को, 15 जून का आसपास मानसून की दस्तक हुई जाए, पर इना बार मानसून राजा थोड़ा हमारा से नाराज छे। फसल उत्पादन का लेना अनुकूल परिस्थिति बढ़ना पर बुआई की तैयारी शुरू करी देवा। इस समय खेत न की सफाई करी जाई रही, खरपतवार न फसल अवशेष हटाना का बाद गहरी जुताई करने से मिट्टी मुलायम न भुरभुरी हुई जाए, जेका से बीज को अंकुरण अच्छो हो। गहरी जुताई से मिट्टी में वायु को संचार बढ़े, न कीट न कांडा नष्ट हुई न भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ी जाए। मानसून आने से पहला वर्षा जल का सुरक्षित करना कलेना खेत न की मेड़ बंदी करी देवा। खेत का चारों तरफ मजबूत मेड़ बनावा ताकि बारिश को पानी बहिना नहीं निकला। साथ जल संरक्षण का लेना तालाब कुआ न जलाशय न की सफाई करी लेवा ताकि जल संकट नहीं होए। किसान भाई, खेत तालाब न चेक डैम जैसी जल संरक्षण तकनीक को उपयोग करी न बारिश का पानी का संरक्षित करी ले, ताकि वर्षा की खेच होने की स्थिति में सिंचाई को पानी हमका इनका सीज उपलब्ध होएगा। अच्छी फसल का लेना उत्तम गुणवत्ता वाला बीज न को चयन करा। कृषि विभाग या प्रमाणित संस्थान से उन्नत किस्म का बीज खरीदा। बीज न को चयन स्थानीय जलवायु मिट्टी न बारिश की स्थिति का ध्यान में रखी न करा। बीज बोने से पहले

इनको उपचार जरूर करा। बीज उपचार से फफूंद कीट कई रोग नसी हमारी फसल का सुरक्षा मिलज ना अंकुरण क्षमता बढ़ज पौधा स्वस्थ ना मजबूत बढ़ज। फाइबर हम जैविक खाद गोबर की खाद कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी की उर्वरता बनावना में सहायक रहज। एक अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस न पोटाश युक्त उर्वरक न को संतुलित उपयोग करा। कृषि वैज्ञानिक न की सलाह के अनुसार उर्वरक न को उपयोग करना से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। मौसम की अनियमितता का चलता मानसून में देरी होना पर कुआ तालाब न नहर का माध्यम से सिंचाई करी जाए। एका लेना ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक न को उपयोग करा। इन्हीं तकनीक से हम पानी की बचत कर सकेगा न पौधा न कभी उसकी आवश्यकता अनुसार पानी मिल जाएगा। नीम आधारित जैविक कीटनाशक फेरोमोन ट्रैप इनको उपयोग हम जरूर करा। साथ ही समेकित कीट प्रबंधन पद्धति का अपनाई न फसल का सुरक्षित रखा। कृषि का साथ साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण छे। पशु न का लेना हरा चारा की व्यवस्था करा न हरा चारा वाली फसल न की बुआई भी हम खरीफ मज करा। साथ ही भाई बहनों पशुपालन से डेयरी व्यवसाय का साथ गोबर को जैविक खाद का रूप में उपयोग करी न कृषि न पशुपालन दुए को संतुलन बनाई न रखा। यानी कृषि का लेना जैविक खाद मिलेगा तो कृषि से पशु न का हरा चारा की उपलब्धता भी होगा। जैका सी कृषि लागत कम होएगा न गुणवत्तापूर्ण फसल हमका प्राप्त होएगा। भाई बहनों ये तो थी आपकी इन हमारी छोटी सी बातचीत। आओ अब सुनान धर्मेंद्र सरमंडल न उनका साथी नसी ये लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था धर्मेंद्र सरमंडल न उनका साथी नसी यो लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे, कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करना सी खेत में किना तत्व की पूर्ति हम करी सकान। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करना सी खेत में हम किना तत्व की आपूर्ति करी सकान। इना प्रश्न का उत्तर हम आपका बतावंगा कार्यक्रम का आखिरी में। बना रहो हमारा साथ पूरा कार्यक्रम में। भाई बहनों, चिना प्रकार से हमारा शरीर में सभी आवश्यक तत्व की आवश्यकता रहे, उनाज प्रकार से मिट्टी का स्वास्थ्य कल्याण भी आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता रहे। कृषि उत्पादन की सफलता मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करे। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का असंतुलित उपयोग से भूमि को अत्यधिक दोहन का कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आवे। मिट्टी का स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करी गई। इन योजना का उद्देश्य किसान नख मिट्टी की स्थिति का बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करनो, न संतुलित उर्वरक का उपयोग कर लेना मार्गदर्शन देनो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसा दस्तावेज छे जेमा किसान का खेत की मिट्टी की जांच का परिणाम लिखेल रहे। मिट्टी का नमूना का प्रयोगशाला में परीक्षण कर लेना भेजो जाए। नौ का आधार पर मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व की स्थिति को विवरण दियो जाए। इना कार्ड में मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन न सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी दी जाए। एक साथ किसान नख ई भी बताया जाए कि किना प्रकार से केतरी मात्रा में उर्वरक न को उपयोग करनो चाहिए। इन योजना का भाई बहनों कई उद्देश्य छे। किसान नख उनकी मिट्टी की वास्तविक स्थिति से जानकारी में लगा, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को पतो लगाणो, उर्वरक न का संतुलित उपयोग का प्रोत्साहित करनो, कृषि लागत का कम करीना फसल उत्पादन न गुणवत्ता में वृद्धि करनो, मिट्टी की उर्वरता का लंबा समय तक बनाए रखना, न पर्यावरण संरक्षण, न टिकाऊ कृषि का बढ़ावा देनो। मृदा कार्ड में कई जानकारी न रहे, जैसे कि मिट्टी का पीएच स्तर में कितरो छे, जैविक कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस न पोटास की उपलब्धता, सल्फर न सूक्ष्म पोषक तत्व न की स्थिति, मिट्टी की उर्वरता को स्तर, उर्वरक न का उपयोग सी अनुशंसित मात्रा न मिट्टी में सुधार का सुझाव का साथ किसान न का वैज्ञानिक खेती अपनाना में भी सहायता करें। भाई बहनों, इन योजना से किसान अपने

0: आवश्यकता अनुसार अपना उर्वरक न को उपयोग करेगा तो फसल की गुणवत्ता न उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। साथ ही अनावश्यक उर्वरक न को उपयोग कम होना से किसान न को खर्चों कम होगा न लाभ बढ़ेगा। संतुलित पोषक तत्व न का उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहेगा न रासायनिक उर्वरक न का उपयोग में कमी से पर्यावरण का संरक्षण मिलेगा। किसान आधुनिक कृषि तकनीक न का अपनावना के साथ नई नई जानकारी भी प्राप्त करेगा। फाइबरहन कई सकान की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारतीय कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी पहल छे। इन योजना में किसान न को उनकी भूमि की वास्तविक जानकारी होएगा, वैज्ञानिक न टिकाऊ खेती की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। एकासी न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर्यावरण संरक्षण होगा। यदि इन योजना को सभी किसान भाई बहन अधिक से अधिक लाभ लेगा तो भारत की कृषि व्यवस्था अधिक सशक्त न मजबूत बनेगा। साथ ही हर किसान समय समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराड़ी न अपनी मिट्टी की सेहत अच्छी बनाई न रखेगा। भाई बहनों, शासन की इन महत्वपूर्ण योजना को अधिक से अधिक लाभ लेवा न अपनी कृषि आय का बढ़ावा। तो भाई बहनों, ये तो थी आपकी न हमारी आज की बात।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भाई बहनों, आओ अब समय से जानकारी को सुनान भेटवार्ता। विषय छे खरीफ में गुणवत्तापूर्ण बीज को उत्पादन। जानकारी दे राज कृषि विज्ञान केंद्र ब्रानपुर का वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सातरकर नापसी बातचीत करी रही बहन मनीषा चौबे।
5: किसान भाई बहनों, राम राम। आपको समय समय पर खेती किसानी संबंधी जानकारी तो देते रहते हैं और अब समय है खरीफ की फसल का। इसके लिए गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन कैसे हो, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल सातरकर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार मैडम। किसान भाइयों, राम राम।
5: आज हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी जरूरत है आज बीज की।
6: जी,
5: और गुणवत्ता युक्त बीज होना हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो बीज क्या है और यह कितनी श्रेणियों का होता है?
6: जी, तो किसान भाइयों, राम राम। मैं राहुल सातारकर, कृषि विज्ञान केंद्र से बुरहानपुर। मैडम ने पूछा बीज क्या है। बीज जो होता है एक परिपक्व बीजांड होता है। इसमें आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, उचित नमी सभी मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इसमें वातावरण की परिस्थितियों में जैसे नमी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि सब मिलने पर इसमें नए पौधे को विकसित करने में सक्षम होता है, उसे बीज कहते हैं। अब बीज मुख्य रूप से 4 से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला बीज जो होता है वह न्यूक्लियस बीज होता है। इसमें 100% की शुद्धता पाई जाती है। इसका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो रिसर्च सेंटर है इस पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस न्यूक्लियस सीड में संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे इसकी शुद्धता की जांच होती है। अगला बीज है प्रजनक बीज। न्यूक्लियस सीड की अगली श्रेणी प्रजनक बीज होती है। इसमें भी 100% की शुद्धता पाई जाती है और इसका उत्पादन भी ICAR के रिसर्च सेंटर्स और कृषि विश्वविद्यालयों में ही होता है। इसमें सुनहरे पीले रंग का टेक लगा होता है, इसकी मुख्य पहचान है। अगला बीज होता है जो फाउंडेशन बीज होता है, जो कि प्रजनक बीज की अगली श्रेणी होता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इस पे सफेद कलर का टेक लगा हुआ होता है। आखिरी बीज जो होता है प्रमाणित बीज होता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इस पर नीले कलर का टेक लगा हुआ होता है। किसान भाई कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए या कमर्शियल व्यापारिक फसल उत्पादन के लिए प्रमाणित बीज का उपयोग अधिकतर करते हैं।
5: ये बात तो आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बताई। बीज की 4 से 6 श्रेणियां हैं और कौन सा बीज उत्तम होता है। अब बात आती है कि बीज का क्या महत्व है, जो अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की क्या विशेषता होनी चाहिए।
6: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। ये भी बीज का महत्व हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश में 100 में से 60 से 65 लोग आज भी कृषि पर आधारित है। तो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा कृषि को। तो जब भी कृषि की बात की जाती है तो सबसे पहली बात आती है बीज की, क्योंकि हम शुरू से हम

0: बचपन से भी सुनते आ रहे हैं हमारे दादा परदादा से कि जैसा बोएंगे वैसा काटोगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है बीज की। अगर हम अच्छी प्रजाति का बीज उपयोग नहीं करेंगे और हम उसके बाद में कितनी भी अच्छी सस्य की बियाए कर ले तो हम अच्छे उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए उत्तम प्रजाति का बीज ही उपयोग करना चाहिए। उत्तम और अच्छी प्रजाति का प्रमाणित बीज का उपयोग अगर हम फसल उत्पादन के लिए करेंगे तो हमको निश्चित रूप से 20-25% की उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अच्छे बीज में आनुवंशिक शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। आनुवंशिक शुद्धता से तात्पर्य है कि जिसमें कि उसमें उसकी आकार में, इसकी ऊंचाई में, इसके उत्पादन में जो प्रजाति का उपयोग कर रहे हैं यह रोग मुक्त हो, ये सारी चीजें आनुवंशिक शुद्धता के अंतर्गत आती है। दूसरी बात है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता के अंतर्गत जैसे बीजों के अंदर दूसरे प्रजाति के बीज मिक्स नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर से रहित होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, सुडोल होना चाहिए, खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए, बौद्धिक शुद्धता भी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ बीज में उच्च अंकुरण क्षमता होना चाहिए। जैसे हर फसल के लिए मैडम सोयाबीन की बात की जाए तो हर फसल के लिए अंकुरण निर्धारित होता है वैज्ञानिकों के अनुसार, तो इसी 70% का अंकुरण होना चाहिए सोयाबीन के लिए। अगर इससे कम अंकुरण होता है तो वह फसल बीज बोने के योग्य नहीं होती। इसी तरह बीज में ओज भी होना चाहिए। ओज से तात्पर्य है कि लंबे अवधि के लिए बीज का उपयोग कर सकते हैं, बीज की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, बीज की ओजता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का मैंने आपको बताया, बीज में परिपक्वता होनी चाहिए। बीज का जो रियल वैल्यू ऑफ सीड जो वैल्यू की 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम बीज उत्पादन अच्छे बीज की विशेषताओं के लिए बहुत जरूरी है।
1: बात आती है कि जैसे ये तो बीज का महत्व हो गया किस तरह की गुणवत्ता वाले होना, साथ ही तकनीक का उपयोग जो स्वयं बीज उत्पादन कर सकते हैं तो कौन सी तकनीक का उपयोग करना चाहिए?
0: हाँ किसान भाइयों, जैसे हम स्वयं का बीज उत्पादन करके अच्छा

0: विविधताओं के लिए बहुत जरूरी है।
1: बात आती है कि जैसे ये तो बीज का महत्व हो गया, किस तरह की गुणवत्ता वाले होना, साथ ही तकनीक का उपयोग, जो स्वयं बीज उत्पादन कर सकते हैं तो कौन सी तकनीक का उपयोग करना चाहिए?
0: हाँ किसान भाइयों, जैसे हम स्वयं का बीज उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, या अपने खेत पर भी बीज का उत्पादन करके हमारे हर वर्ष हमको बीज खरीदना ना पड़े, तो इसके लिए हम लोगों को स्वयं का बीज उत्पादन करना बहुत आसान है। इसमें कुछ वैज्ञानिक तकनीकियों का उपयोग हमको करना चाहिए, जैसे कि हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमने पिछले 2 वर्षों से खुद का बीज उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं और चने का हम लोगों ने किया है। तो बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले खेत के चयन की बात आती है, तो हम हमारे खेत का चयन करते हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि हम जिस भी फसल का उपयोग कर रहे हैं क्या हमारी यहाँ की जो जमीन है उस बीज के लिए उपयोगी है या उस बीज के लिए उपयुक्त है या नहीं। दूसरी बात आती है बीज स्रोत, हम किस स्रोत से बीज ला रहे हैं, हम चाहे आईसीआर से ला रहे हैं, रिसर्च सेंटर से ला रहे हैं, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से ला रहे हैं, तो उसको लाते समय उसके टेग, उसकी पावती, उसकी रसीद आवश्यक रूप से संभाल के रखकर कोई स्रोत का भी विशेष महत्व होता है। अब अगली बात होती है कि बीजोपचार का भी बहुत महत्व है बीज उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों, क्योंकि क्या है कोई भी अगर बालक पैदा होता है या बालिका पैदा होती है और डॉक्टर सबसे पहले 18 महीने का एक उनको वैक्सीन का चार्ट दे देता है, तो यही बात बीजों में भी लागू होती है। अगर हम बीजोपचार करेंगे किसी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड दवा से तो 15-20% बीमारियों आने का खतरा कम हो जाएगा, तो इसीलिए बीजोपचार आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगली बात बीज दर का भी बहुत महत्व है, हर फसल के लिए किसान भाई बीज दर निर्धारित की गई, जैसे हम सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में 1 एकड़ में 30 किलो बीज गिरना चाहिए, वही चना भी 1 एकड़ में 30 किलो गिरना चाहिए, गेहूं 40 किलो प्रति एकड़ गिरना चाहिए, और किसी कारण से अगर हम बुवाई में लेट होते हैं तो हमको 5-10 किलो बीज की मात्रा बढ़ाकर बोनी चाहिए, तो इसीलिए बीज दर का भी बहुत विशेष महत्व है। इसी तरह खाद एवं उर्वरकों का भी बहुत महत्व है, तो किसी भी बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं या खेती किसानी कर रहे हैं शादी, तो किसान भाई को मिट्टी की जाँच भी 3 वर्ष में 1 बार आवश्यक रूप से करवानी चाहिए, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है। जैसे हर फसल के लिए जैसे गेहूं की बात की जाए तो जिसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, तो यश इसके आधार पर भी किसान भाई को बीज का खाद और उर्वरक डालना चाहिए। साथ ही साथ बीज उत्पादन के लिए किसान भाई को जैसे ये छोटे जो रोगिंग का बहुत महत्व है, रोगिंग की प्रक्रिया का, जैसे हम फूल की अवस्था में, परिपक्वता की अवस्था में किसी दूसरी जाति के फूल या दूसरी जाति के पौधे जो सिमिलरिटी ना दिखे अगर पौधों में, तो उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिससे कि हमारे बीच में मिक्स होने की संभावना कम हो। और साथ ही साथ यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए जब थ्रेशिंग करते हैं किसान भाई, तो उसमें यांत्रिक क्षति नहीं होना चाहिए, बीज कटना पिटना नहीं चाहिए, इसलिए उसकी स्पीड को कम करना चाहिए। और आखिरी अंतिम बात मैं किसान भाइयों को बीज उत्पादन के लिए यही बताऊंगा कि अपने खेत से जब बीज निकल जाता है उसको जब हम भंडारण करते हैं, भंडारण करते समय उसकी नमी 12% से नमी अधिक नहीं होना चाहिए, जूट के बोरों में उसकी पैकिंग वगैरह कर उसको सुरक्षित भंडार गृहों में रखना चाहिए, जिससे कि उस बीज का उपयोग हम अगले वर्ष भी कर सके।
1: बीज का भंडारण किस तरह से कर ले और फिर हम अगले साल के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। अब बात आती है कि प्रमाणीकरण संस्था का इसमें क्या रोल है?
0: किसान भाइयों, अगर हमने बीज का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन बीज प्रमाणीकरण संस्था का इसमें मुख्य रोल होता है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता का दायित्व बीज प्रमाणीकरण संस्था का ही होता है। चाहे हम प्रमाणित बीज का उत्पादन करें या आधारीय बीज का उत्पादन करें, तो इसके लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा गठित समिति के द्वारा ही इसकी गुणवत्ता का निर्धारण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बीज का सत्यापन किया जाता है, तो बीज का सत्यापन के लिए जैसे हमको आधारीय या प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो हमको आधारीय या प्रजनक बीज का उपयोग बोने के लिए करना पड़ेगा, और समय समय पर बीज प्रमाणीकरण संस्था बीज के सत्यापन के लिए हमको बीज के टेग, बीज की रसीद आदि चीज़ें उपलब्ध करवाकर हमारे बीज का सत्यापन करती है। अगली बात यह है कि फसल का निरीक्षण करती है बीज प्रमाणीकरण संस्था, तो बीज प्रमाणीकरण के अधिकारियों के द्वारा फसल की पुष्पावस्था या परिपक्वता की अवस्था में जाकर देखा जाता है कि बीज में कोई अवांछनीय पौधे तो नहीं है, कोई दूसरी जाति के पौधे तो नहीं है। अगर हमारे सीड प्लॉट में दूसरी जाति

0: के पौधे दिखे या अवांछनीय पौधे दिखे तो फसलों के अनुसार काउंट किए जाते हैं। काउंट में अगर अवांछनीय पौधों की संख्या या दूसरी संख्या ज्यादा दिखती है फसल को नष्ट कर दिया जाता है, और अगर नहीं दिखती है तो फसल को आगे फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। तो अब अगली बार अंकुरण की जांच के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा आधारीय और प्रमाणित बीजों का परीक्षण बीज प्रमाणीकरण संस्था की लेबोरेटरी में किया जाता है, जबकि जनक बीजों के अंकुरण का प्रतिशत विश्वविद्यालय स्तर की प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। अब अगली बात आती है, टैगिंग की प्रक्रिया की जाती है, और टैगिंग की प्रक्रिया बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा फसलों की श्रेणी के अनुसार, जैसे फाउंडेशन सीड है तो उन्हें सफ़ेद कलर का टैग लगा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद पैकिंग की जाती है। प्रमाणित बीज है तो उसमें नीले कलर का टैग देकर उसमें इसकी पैकिंग करवाई जाती है। पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह पैकिंग एक में जो बीज की मात्रा एक एकड़ के लिए पर्याप्त हो। यह सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में हम किसान भाई उस बीज को अगले वर्ष हम बीज के रूप में बेच सकते हैं या हमारे खेतों में उपयोग कर सकते हैं।
1: बीज उत्पादन का किसानों को फायदा क्या है?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न मैडम। किसान भाइयों, मैं आपको यही कहूँगा कि बीज उत्पादन का फायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है, हम खेती किसानी तो कई वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी हमारे ज़िले में या कई ज़िलों में हम देखते हैं कि किसान भाई सिर्फ खेती पर निर्भर है, इनकी जीविका चलाना भी कभी कभी कठिन हो जाता है मैडम। तो इसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली भारत सरकार भी या मध्य प्रदेश सरकार भी बात करती है कि खेती के साथ साथ अन्य उद्योग धंधे भी होना चाहिए, तो उसमें बीज उत्पादन का कार्य भी किसान भाई अगर करता है, जो प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई, उसमें करना कुछ नहीं है, छोटी छोटी वैज्ञानिक तकनीकियों को अपना कर अगर हम ये बीज उत्पादन का कार्य किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसको हर वर्ष बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। और अगर बीज, जैसे हमने सोयाबीन का बीज उत्पादन का कार्य शुरू किया, तो हमको हर वर्ष बीज खरीदना नहीं पड़ेगा, तो बीज से हमारा जो खर्च हो रहा है उससे बचेंगे। अगर हमारे पास में ज्यादा मात्रा में बीज होगा तो हमारे अगल बगल के किसानों को हम बीज बेच कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इसको हम अगर आगे चलकर बड़े स्तर पर भी हम बीज उत्पादन का कार्य करेंगे। कई जो प्रगतिशील किसान भाई आज भी बीज उत्पादन में अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अंत में मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि आप लोग भी बीज उत्पादन का कार्य करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बीज उत्पादन से संबंधित आप लोगों को कभी कोई जानकारी हासिल करना है या कोई तरह की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में बुरहानपुर में, वहाँ पर पादप प्रजनन आनुवंशिकी से वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ। धन्यवाद, राम राम।
1: डॉक्टर राहुल सातरकर जी, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इससे वे जरूर लाभ लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई बहनों, अभी हम सुने राता भेंटवार्ता, विषय थो खरीफ में गुणवत्तापूर्ण बीज न को उत्पादन। जानकारी दे रहा था कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सातरकर। आपसे बातचीत करी रही थी बहन मनीषा चौबे। भाई बहनों, आओ अब सुना कांता चौहान ने उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहन, अभी हम सुने रहा था कांता चौहान और उनका साथी नसी यो लोकगीत। अब समय छे कृषि समाचार को। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषक ने सलाह दी गई कि वो अपना अपना क्षेत्र में मानसून का आवना पर जब न्यूनतम 100 मिलीमीटर वर्षा होए तब सोयाबीन की बोनी करा। अपनी जलवायु क्षेत्र का लेना अनुकूल कम समय अवधि में पकने वाली सोयाबीन की किस्म को चयन करी न बीज उपलब्धता सुनिश्चित करा। अंकुरण परीक्षण का माध्यम से सोयाबीन बोने का लेना उपलब्ध बीज को न्यूनतम 70% अंकुरण सुनिश्चित करा। सोयाबीन की खेती का लेना आवश्यक आदान बीज खाद उर्वरक फपुंद नाशक खरपतवार नाशक जैविक कल्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करा। पोषण प्रबंधन

लेना अंतिम बखरनी का पहला गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टर का खेत में फैलाइना अच्छी तरह से मिलाई देवा। सूखा, अतिवृष्टि, असामयिक वर्षा जैसी स्थिति में यानी विपरीत परिस्थिति में फसल बचावना का लेना रीच फरो पद्धति को उपयोग करा। भाई बहनों, आज सोमवति अमावस होने से कृषि उपज मंडी से उपज का भाव प्राप्त नहीं हुआ है। मौसम की जानकारी आज सूर्योदय प्रातः 5:41 पर हुई न सूर्यास्त शाम 7:07 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनों, ये तो थी मौसम की जानकारी। नाओ अब सुना आनंदराम न उनका साथी नसी यो लोकगीत।

अभी हम सुन रहा था आनंदराम ने उनका साथी नसीह लोकीत। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न पूछो थो कि कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करने से खेत में किना तत्व की पूर्ति करी जा सकत। तो भाई बहन कपास फसल का अवशेष न को खाद का रूप में उपयोग करना से खेत में हम कापर तत्व की आपूर्ति करी सका। एक साथ कार्यक्रम को समय पूरा हो आज्ञा देव। राम राम।

0: अभी खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा।

0: विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिव के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिव के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे।
2: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
3: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में

0: लाने के लिए आवश्यक है वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं। और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है। और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है,
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी।

0: फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 की योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में मैंने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन।

0: पहुंच लिए जा चुके हैं। 73 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है। और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिल करके कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि

0: क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता है वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabarwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction

0: Listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। यह आकाशवाणी

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान

0: लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, या अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI

0: पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने

0: मुरली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग,
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगली, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म याद

जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एसडी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गा

मना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सबके लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है, हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

तिलिस्मी नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना। आंखों में सुरूर, लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा। गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।

न रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

लगता है कि जहाँ

0: समझ हो कैसे समझाऊं,
1: बड़े ना समझ हो कैसे समझाऊं।
2: साथ में जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया

0: चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel

0: IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।